सुप्रभात। एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तिथि 25, तदनुसार 15 जून वर्ष 2026। प्रातः के 5:58

0: इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। प्रातः के 6 बजने को है। अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी में समाचारों के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रीनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रीनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश

0: के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 6:05 हुए हैं, समय हो गया है भक्ति रचनाओं के कार्यक्रम वंदनवार का। इस कार्यक्रम के लिए आइए चलते हैं विविध भारती मुंबई।

आज का चिंतन। सुकरात का ये कथन है कि संसार में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने का सरल और निश्चित उपाय यही है कि मनुष्य वास्तव में जैसा है वैसा ही अपने आप को व्यक्त करे। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। झरोखा के ठीक बात यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान भाग 220। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता, श्रृंखला गजतत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाड़िक। इस श्रृंखला की चौथी कड़ी आज आप सुनेंगे। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। सुबह 7:00 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 का समय है त्रिवेणी कार्यक्रम का और 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री और गायिका सुरैया पर। इस कार्यक्रम का दोबारा प्रसारण रात 9:30 पर होगा। सुबह 10:00 कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का तीसरा भाग आपको सुनवाया जाएगा। सुबह 11:00 कार्यक्रम होगा रंग तरंग और 12:05 पर यादों की महफिल। दिन में 1:00 का समय है सुरीला सफर इस कार्यक्रम का और दिन में 2:00 सुनिए त्रिवेणी। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे और दिन में 3:00 का समय है सखी सहेली इस कार्यक्रम का। शाम 4:00 सुनिए कार्यक्रम पिटारा, इसके अंतर्गत कार्यक्रम सेहतनामा, जीवन शैली और योग। इस विषय पर योग शिक्षक शारदा अग्रवाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। शाम 5:00 कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 7:00 सुनिए कार्यक्रम जयमाला और 7:45 पर एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में, जिस फिल्म के गाने आप सुनेंगे उस फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने। रात 8:00 कार्यक्रम हवा महल झलकी नीम हकीम, इसके लेखक हैं राजकुमार वाल्टर और निर्देशक हैं गोपाल सक्सेना। रात 8:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक और 9:00 सुनिए आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार अभिनेत्री और गायिका सुरैया पर केंद्रित होगा ये कार्यक्रम। रात 10:00 का समय छाया गीत कार्यक्रम का है और 10:30 पर ढलती जाए रात। रात 11:00 सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान भाग 220।

चित्रकूट की सभा में भरत की अनुनय विनय सुनकर श्री राम के मन में असमंजस उत्पन्न हुआ और उन्होंने विह्वल हो भरत जो और जैसा चाहे वैसा ही करने का वचन दे डाला। ये सुनकर जहां एक ओर उपस्थित जनसमुदाय हर्षित हुआ, वहां दूसरी ओर देवताओं के मन में नैराश्य उत्पन्न हो गया। देवगण सहित इंद्र आशंकित हो गए। यदि भरत के आग्रह पर श्रीराम अयोध्या लौट गए तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। उन्हें मालूम है कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त के वश में हैं। भक्त प्रहलाद ने नृसिंह के रूप में भगवान को प्रकट किया था। अतः देवताओं ने भरत के हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी योजना को फलवती बनाने का निश्चय किया। देवगुरु बृहस्पति ने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी। फलस्वरूप भरत के मन में अपना आग्रह त्याग कर ये विचार आया कि श्रीराम की आज्ञा पालन करने में ही कल्याण है। उन्होंने स्वामी की प्रशस्ति करते हुए निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया।

0: गज तत्व वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: कल हमने लोक संगीत में प्रचलित विभिन्न सारंगियों की बात की थी, आज हम शास्त्रीय संगीत में प्रचलित सारंगी के संबंध में विचार करेंगे। सच पूछा जाए तो सारंगी हमारी मूल्यवान और समृद्ध वाद्य संगीत परंपरा का परिचायक है। गज से बजाए जाने वाले वाद्यों में सारंगी एक ऐसा वाद्य है जिसका प्रथम सप्तक अचल थाट में, दूसरा सप्तक रागानुरूप और तीसरा सप्तक संवाद स्वरों में मिलाया जाता है। गायन में सारंगी की संगत से यदि वादक सुरीला हुआ तो जिस भरावट व आकर्षण की वृद्धि होती है वह अपने आप में अनुपम है। इसके आविष्कर्ता के संबंध में अमीर खुसरो, सारंग खान, मियाँ कल्लू खां, हकीम बकरात गो तथा रावण आदि के नाम लिए जाते हैं। इसके गज का आकार धनुष के समान होता है और धनुष को सारंग भी कहा जाता है। इसीलिए यह भी संभव है कि धनुष से बजाए जाने के कारण इसका नाम सारंगी पड़ा हो। वर्तमान पीढ़ी के श्रेष्ठ सारंगी वादक पंडित राम नारायण जी ने चर्चा के दौरान बताया कि एक जमाने में सारंगी को सौरंगी कहते थे और सौरंगी से बिगड़कर सारंगी नाम प्रचलित हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके आविष्कर्ता के संबंध में विभिन्न मत पाए जाते हैं। मध्यकालीन ग्रंथकारों ने सारंगी का उल्लेख भिन्न भिन्न नामों से किया है किंतु विस्तृत वर्णन नहीं किया है। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 13वीं शताब्दी तक यह अल्प रूप में प्रचारित हो चुकी थी। संगीत राज ग्रंथ के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह प्रचलित हो गई थी। यही कारण है कि आईने अकबरी और राग दर्पण ग्रंथों में सारंगी का वर्णन मिलता है। 17वीं शताब्दी में रचित राग दर्पण में सारंगी वादकों का वर्णन भी है। इसके अलावा संगीत नारायण ग्रंथ में सारंगी वीणा का विस्तृत विवेचन किया गया है। आइए इस मधुर वाद्य सारंगी पर राग किरवानी सुनते हैं। कलाकार हैं उस्ताद अब्दुल लतीफ खां।

अब हम सारंगी के आकार पर विचार करेंगे। सारंगी की लंबाई लगभग 2 फीट होती है। इसके नीचे वाले भाग को मंधान कहते हैं, जिसे चमड़े से मढ़ दिया जाता है। घुरच अर्थात ब्रीच की व्यवस्था इसी मंधान में की जाती है। मध्य भाग को छाती अथवा गला कहते हैं। छाती की बाईं ओर 24 छोटी छोटी खुटियां तरबों के लिए लगाई जाती है। सबसे ऊपर वाले भाग को मगज कहते हैं, जिसमें दाएं बाएं मुख्य तार हेतु 2-2 बड़ी खुटियां और 11 तरबों हेतु छोटी खुटियां लगाते हैं। इस प्रकार इसमें मुख्य 4 तार और 35 तरबों के तार लगाए जाते हैं। वर्तमान में सारंगी वादक मुख्य 4 तार को सामान्यतः इस प्रकार मिलाते हैं। प्रथम तात का तार मध्य सप्तक षड़ स्वर में, दूसरा तात का तार मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में, तीसरा तात का तार मंद्र सप्तक के षड़ स्वर में और चौथा तार फौलाद का पंचम में अथवा मध्यम में राग के अनुसार मिलाते हैं। गज को दाहिने हाथ में पकड़कर तारों पर घर्षण किया जाता है। सितार, वायलिन आदि वाद्यों में स्वर उत्पत्ति हेतु अंगुलियों से तार को दबाया जाता है, जबकि सारंगी में स्वर निकालने हेतु अंगुलियों के नाखून का स्पर्श या घर्षण किया जाता है। भारतीय संगीत की सूत, घसीट, गमक, कर्ण, खटका, मुरकी आदि विशेषताओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखने के बाद भी सारंगी जितनी लोकप्रिय होना चाहिए उतनी लोकप्रिय नहीं है, जिसका कारण वाद्यगत कठिनाई और व्यवहारिक जीवन से है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उस्ताद बुंदू खां और पंडित राम नारायण जी ने सारंगी वाद्य को एकल वाद्य के रूप में स्थापित करने का हर संभव प्रयत्न किया और इसमें इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। अब हम पंडित राम नारायण जी के सारंगी का रसास्वादन करते हैं।

डॉक्टर प्रकाश महाडिक। प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले जो गीत आपको सुनवा रहे हैं ये दिल्लगी फिल्म का गाना सुरैया और श्याम की आवाजों में, शकील बदायूं की बोल, संगीत नौशाद अली का। आज अभिनेत्री और गायिका सुरैया को उनके जन्मदिवस पर हम याद कर रहे हैं।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

अनमोल घड़ी फिल्म का ये गाना सुरैया की आवाज में आपने सुना, तनवीर नकवी के बोल, संगीत नौशाद का। अगला जो गीत है ये बड़ी बहन फिल्म का गाना सुरैया की आवाज में, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत हुस्नलाल भगतराम का।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गीत शकील बदायूनी का लिखा हुआ श्याम सुंदर का संगीत बद्ध किया ये गाना सुरैया की आवाज में, फिल्म का नाम चार दिन।

0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, लेकिन कार्यक्रम में इस वक्त समय हो चला है एक अंतराल का।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

लीजिए अब सुनिए सुरैया की आवाज में प्यार की जीत इस फिल्म का गाना। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीत है हुस्नलाल भगतराम का।

0: आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल

0: ये आवाजें थी सुरैया और तलत महमूद की, शब्दकार मिर्जा गालिब, संगीत गुलाम मोहम्मद का, फिल्म मिर्जा गालिब।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।

0: 3 बजे, मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
0: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: हम ही रही प्यार के इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं चांद और सूरज। इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत सलील चौधरी का।

मोहब्बत इसको कहते हैं, ये फिल्म का नाम है। मुकेश और आशा भोंसले की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी की बोल, संगीत है खय्याम का।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको अनजान का लिखा हुआ गाना हम सुनवाते हैं। जीएस कोहली का संगीत, फिल्म का नाम नमस्ते जी।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में मेरे सनम इस फिल्म का गाना। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई ओपी नैयर ने।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
2: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। अगला गाना आपको सुनवाते हैं वक्त फिल्म का गाना, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

0: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
1: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
1: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: और श्रोताओं, अब आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। प्रातः के 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुस जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुस जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुस जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
4: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
5: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं।

0: हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
3: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
4: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
5: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
4: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91

0: हजार किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो

0: बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए, पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
2: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। और श्रोताओं, आगे के कार्यक्रमों के लिए आपको ले चलते हैं विविध भारती मुंबई। वक्त हो गया है कार्यक्रम त्रिवेणी का,
5: आइए सुने त्रिवेणी।

दोस्तों, मनुष्य के जीवन में पैसे का बड़ा महत्व है जो बढ़ता ही जा रहा है, और पैसे की बढ़ती अहमियत ने हर इंसान को कमाई के लिए दौड़ने पर मजबूर कर दिया है।

0: अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम धन अर्जित करते हैं। जरूरतें पूरी होने पर लोग जुट जाते हैं अपना सामाजिक स्तर बढ़ाने में, जिसके लिए और अधिक धन की आवश्यकता होती है, और इसी चक्कर में वे अपने करीबी लोगों से दूर होते जाते हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, मगर पैसे का गुरूर कतई अच्छा नहीं है।
1: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा।

जरूरतें पूरी करते करते हम अपनी इच्छाओं को पैसों से पूरा करने में लग जाते हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता। ऊंची अट्टालिका में रहने वाला नर्म बिस्तर पर भी रात भर सो नहीं पाता, और दिन भर मेहनत करके एक इंसान पत्थर की सेज पर गहरी नींद सोता है। एक संतोषपूर्ण जीवन ही समृद्ध जीवन है। मन में संतोष का होना बहुत जरूरी है। शांत मन किसी भी परिस्थिति में गुनगुनाता रहता है और आनंद से भरा होता है।

0: किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सु

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं। परिवार

0: और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
3: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
2: क्या ये जांच उपलब्ध है?
4: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
5: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
4: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
5: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
6: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों आज है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, यानी कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। हर साल 15 जून को ये दिन मनाया जाता है और ये दिन बुजुर्गों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए समर्पित है। वृद्ध लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उनकी उपेक्षा जो होती है उसको समाज में उजागर करना और उनको सम्मान देना, उनकी गरिमा को सुनिश्चित करना, ये इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है। कुछ और बातें हम आगे करेंगे, अभी आपको सुनवाते हैं MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस फिल्म का गाना पलक मुच्छाल की आवाज में, मनोज मुंतशिर के बोल, संगीत है अमाल मलिक का।

मीत ब्रदर्स जुबिन नौटियाल और ध्वनि भानुशाली की आवाजों में लीजिए अब सुनिए कुमार का लिखा हुआ गाना, मीत ब्रदर्स का संगीत और फिल्म का नाम मर जावां।

0: सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयां लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

जैसा कि हमने आपको बताया कि आज बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है, 15 जून को ये दिन मनाया जाता है। और बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो वो हमारे घर के आधार स्तंभ होते हैं। उनके अनेक प्रयासों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से हमारा घर बना है या इतना आगे बढ़ा है या उसने इतनी प्रगति की है। जब वही बुजुर्ग जब वो बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो अक्सर उनकी अनदेखी होती है, कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। ये दुर्व्यवहार शारीरिक रूप से भी हो सकता है, मानसिक और आर्थिक रूप से भी हो सकता है। कई बार उनकी बहुत घोर उपेक्षा की जाती है, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसकी वजह से वो दुखी हो जाते हैं और कई बार उन्हें बहुत पीड़ा भी होती है। तो इन्हीं बातों के मद्देनज़र ये परिस्थितियां ना आए, इसी बात को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो हमें ये बात सुनिश्चित करनी है कि हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं या समाज में जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार ना हो, उनकी गरिमा, उनकी स्वतंत्रता और उनके अधिकार बने रहें और वो एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। तो आज है बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम जारी है चित्रलोक। अब आपको सुनवाते हैं लुका छुपी फिल्म का गाना। करण सहम्बी की आवाज में निर्माण का लिखा हुआ गाना, तनिष्क बागची और गोल्ड बॉय का संगीत।

आइए अब सुनते हैं बद्रीनाथ की दुल्हनिया, इस फिल्म का गाना अमाल मलिक और श्रेया घोषाल की आवाजें, शब्बीर अहमद का लिखा हुआ गाना, अमाल मलिक का संगीत।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक

0: सांस्कृतिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए एक विलेन। इस फिल्म का गाना अंकित तिवारी की आवाज में, मनोज मुंतशिर के बोल, संगीत है अंकित तिवारी का।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए,
3: कहिए,
0: सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना,
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
4: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, लव यात्री फिल्म का ये गाना है। देव नेगी यो हनी सिंह इनकी आवाज़ें हैं, शब्बीर अहमद यो हनी सिंह और होमी दिल्लीवाला इनका लिखा हुआ गाना, तनिष्क बागची का संगीत है।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना बागी फिल्म का गाना मोलारी ठाकुर और मीत ब्रदर्स की आवाजों में, कुमार का लिखा हुआ गाना, मीत ब्रदर्स का संगीत।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयां लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। और श्रोताओं, अब समय हो गया है कार्यक्रम आज का अखबार का।
4: आज का अखबार।

नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम आज का अखबार लेकर हाजिर हूँ मैं शालिनी। दोस्तों कैसे हैं आप? भाई हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बदला हुआ मौसम है इसमें आप खूब एंजॉय कर रहे होंगे, और एंजॉय करें भी क्यों ना, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं और ऐसे में बच्चे भी इस अच्छे बदले हुए मौसम में बाहर खेल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और ठंडी ठंडी पवन जो है वो आजकल बह रही है क्योंकि पहाड़ों पर भी बारिश हुई है, जमकर बारिश हुई है। और अगर मौसम विभाग की माने तो अगले 3-4 दिन मौसम थोड़ा सुहाना ही रहने की आशंका है। भाई बात हो रही है हवा की, पवन की। आज पवन की ही बात कर ली जाए क्योंकि आज दिन है सेलिब्रेट करने का वायु को। जी हाँ, वायु जिसके बगैर हम सभी का जीना नामुमकिन है। आज विश्व वायु दिवस मनाया जा रहा है। पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसकी भूमिका को रेखांकित करने के लिए हर साल 15 जून को यानी आज के दिन ये दिन मनाया जाता है। भारत आज गोवा में विश्व वायु दिवस 2026 सम्मेलन की मेजबानी करेगा और इस साल की थीम है पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा से गतिशीलता की ओर। इस सम्मेलन में सरकार, नियामकों, विकासकर्ताओं, निर्माताओं और स्पेशलिस्ट के साथ पूर्ण सत्र और पैनल चर्चाएं आयोजित की जाएंगी और विचार विमर्श का उद्देश्य है तेजी और सुधार लाने का, घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए किसकी, इसके कार्यान्वयन के लिए। तो पवन ऊर्जा की बात हम आज कर रहे हैं और इसकी ऊर्जा जो है इसको बढ़ाने की बात हो रही है। पवन ऊर्जा से जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में आती हैं बड़ी बड़ी विंड मिल्स यानी कि पवन चक्कियां जो हैं वो चलती हुई, है ना, वही हमारे जहन में आती हैं। तो एक बात और भी हम आपको बता दें कि ये सम्मेलन जो है जो आज आयोजित हो रहा है गोवा में, ये भारत की पवन ऊर्जा यात्रा के लिए अगले चरण की प्रमुख प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करेगा और इसी दौरान वैश्विक बाजारों के लिए भारत के पवन टर्बाइन निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी रिपोर्ट भी आज जो है वो जारी की जाएगी। तो भारत बहुत सारे कदम ले रहा है क्लाइमेट चेंज को देखते हुए और भारत को इसके लिए सराहा भी जाता है। पूरे विश्व भर के जितने भी नेता हैं वो हमारे देश की ओर देखते हैं जब हम क्लाइमेट चेंज की भी बात करते हैं, चाहे वो पीस टॉक्स हो या फिर क्लाइमेट चेंज की बात हो, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो। हमारा देश हमेशा ऐसी टॉक्स में और ऐसे इनिशिएटिव्स लेने में हमेशा अग्रसर रहता है और अग्रणी रहता है। तो हम सबको भी हमेशा यही प्रयास करते रहना है कि हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करें, अपनी तरफ से हम पोल्यूशन ना करें। हालांकि ये जो बात हो रही है आज वो पवन ऊर्जा की बात हो रही है, लेकिन पवन को साफ रखने का काम जो है वो हम कर सकते हैं, उसमें हमें कोई एफर्ट्स नहीं लग सकते हैं। उसके लिए हमें बस थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रयास करने हैं और देखिए हमारा देश और ये विश्व है उस सबको हमारे छोटे छोटे प्रयासों की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब ठंडी ठंडी मीठी मीठी पवन चलती है तो हम सभी को अच्छी लगती है ना।

0: और इस बहुत ही खूबसूरत गीत के बाद अब बारी है एक ब्रेक की।
1: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है

0: कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ और यह है कार्यक्रम आज का अखबार। कार्यक्रम में अब बारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों की यानी हेडलाइंस की। राष्ट्रीय समाचारों में तृणमूल टूटी, बागी गुट का NCPI में विलय, स्पीकर से किया अलग बैठने का आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल जेट के लिए मेक इन इंडिया पर जोर दिया। इनोवेशन रोडमैप 2030 के अंतर्गत 5 वर्ष में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पीओके में विद्रोह से हताश पाकिस्तान ने संघर्ष विराम तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया पहुंचने पर भारतीय प्रवासी समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वे आज अपने स्लोवाक समकक्ष रॉबर्ट फीको के साथ ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य अभियान समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर समझौता हुआ। T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत की बेटियों ने पाकिस्तान को लगातार चौथी बार हराया। आगरा की दीप्ति ने लिए 5 विकेट।

विश्व कप तीरंदाजी में भारत को मिले 2 स्वर्ण, धीरज ने निजी व मिश्रित में दक्षिण कोरिया को हराया। एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम के एडमिट कार्ड किए जारी। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गाजा पर इजरायली हवाई हमलों में 6 फिलिस्तीनियों की गई जान। फ्रांस में आज से 52वें G7 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ। भारत 13वीं बार साझेदार देश के रूप में भाग लेगा। और विश्व नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का किया स्वागत। तो ये थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार।

0: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।
1: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
4: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
3: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
4: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
3: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
4: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

आज का अखबार कार्यक्रम में अब बारी आ गई है लोकल और रीजनल हेडलाइंस की। पहले कुछ समाचार ट्राइसिटी से। कैशियर हत्याकांड में चंडीगढ़ पुलिस के हाथ नहीं लगा कोई भी सुराग।

घग्गर नदी में डूबने से बल्टाना के युवक की मौत, चार दोस्तों के साथ घूमने गया था मोरनी। ट्राई सिटी में गर्मी से मिली राहत, अगले चार पांच दिन गरज चमक और तेज हवाओं के आसार, कहना है मौसम विभाग का।

और अब बारी क्षेत्रीय समाचारों की। पंजाब में आज से शुरू होगा SIR। पंजाब के हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत बनेंगे सबसे अधिक मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी। पंजाब भाजपा ने हरी झंडी दिखा पंच तीर्थ यात्रा की शुरू। 5 राष्ट्रीय स्मारकों के दर्शनों को 150 श्रद्धालु बसों से हुए रवाना। हरियाणा में राजस्व सुधारों के लिए पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2 जल्द होगा लागू। हरियाणा को मिले 11 नए IAS पद। 7.5 साल बाद कैडर में बड़ा विस्तार।

हरियाणा में आज से वोटर लिस्ट की घर घर जांच, फॉर्म नहीं लौटाया तो प्रारूप सूची से कटेगा नाम। बीएलओ तीन बार घर पहुंचेंगे, 22 सितंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची।

0: और हिमाचल में दुग्ध उत्पादकों के लिए अब मुश्किल, मिल्क फेड खरीदेगी अब सिर्फ 20 लीटर दूध। तो ये थी लोकल और रीजनल हेडलाइंस, और अब फिर से बारी आ गई है संगीत के सफर पर जाने की।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब आज का अखबार कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। इसी दुआ के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि आप सभी रहें हेल्दी हैप्पी, मैं शालिनी आवाज से आज का कार्यक्रम से लेती हूँ, आज का अखबार कार्यक्रम से लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: इस समय आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य

0: कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
0: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियोन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राम मोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। श्री नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की अलग सोच और अलग सृजनात्मक दृष्टिकोण होता है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विविधता ही नई संभावनाओं को जन्म देती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ लेकर हाजिर होंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: और लीजिए प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो हेलो, कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो चंडीगढ़।

0: सुप्रभात एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं शालिनी. और श्रोताओं कैसे हैं आप भाई? उम्मीद करते हैं कि इंतजार में हैं कि कब ये लाइव फोन इन प्रोग्राम शुरू हो और हमारा और आपका बातों का सिलसिला एक बार फिर से हो जाए शुरू. जी हाँ, बातें करेंगे और विचार विमर्श करेंगे, आपस में साझा करेंगे विचार. और हमेशा की तरह आज भी एक ऐसा विषय जो हम से और आपसे सभी से जुड़ा हुआ है, जागरूकता का विषय है. आज हम जहाँ एक ओर विश्व वायु दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज जो हमारा विषय है वो भी इसी ओर इशारा करता है, जो संसाधन है. जी हाँ, आज बात करेंगे बिजली पानी की. बिजली पानी बचाने की बात होगी और इसीलिए हमने आज का विषय जो है वो रखा है, बिजली पानी की किल्लत से बचें, सोच समझ कर इनका उपयोग करें. यानी कि बिजली और पानी बचाने की आज हमें बात करनी है. कैसे आप पानी बचाते हैं, बिजली बचाते हैं, या फिर कोई ऐसे कदम जो आपने इसमें इस दिशा में उठाए हों, या आप कुछ लोगों के साथ मिलकर कोई समूह बनाकर अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो वो हमसे ज़रूर शेयर करें. क्योंकि जब हम शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों को भी हमसे आइडियाज़ मिलते हैं, दूसरे लोगों को भी हम प्रेरित करते हैं कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है, हम ऐसा भी कर सकते हैं. तो चलिए आपको बता देते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स. चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172 और फ़ोन नंबर्स 2660615, 2660617 और 2660619. और विषय बताने की देर थी, फ़ोन कॉल्स आनी हो गई हैं शुरू. तो देखते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर. हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत. अपना नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं ये भी बताएं.
1: नमस्कार जी.
0: जी नमस्कार,
1: मैं कृष्ण कुमार बोल रहा हूँ, डीसी सोलन से, हिमाचल प्रदेश से.
0: कृष्ण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में इस विषय पर?
1: आज के कार्यक्रम में यही कहना चाहेंगे जी, बिजली का दुरुपयोग ना करो, उसका उपयोग करो
0: जी.
1: और पानी की मतलब वेस्टेज ना करो, उसको भी बचा के रखो
0: जी,
1: जो आगे समय में हमारे को आगे जाके हमारे को कोई दिक्कत ना इस बात की
0: जी. क्योंकि देखिए कृष्ण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बचाना बहुत जरूरी है. कहते हैं कि हम कोई चीज अगर कमा नहीं सकते तो हम बचा तो कर भी उसे कमा सकते हैं, है ना?
1: उसको वेस्ट भी नहीं करना चाहिए. अगर हम सही उपयोग करेंगे तो आगे हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा जी.
0: बिल्कुल,
1: आगे और के भी किसी काम आएगा.
0: बिल्कुल, देखिए हम अपने अक्सर अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली जो संतान है या अपने आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम अपनी संपत्ति छोड़ के जाते हैं, जमीन जायदाद छोड़ के जाते हैं, ना धन छोड़ के जाते हैं. लेकिन असली धन तो ये है. क्योंकि देखिए हमारे पास कितना भी धन हो, कितनी भी हमारे पास संसाधन हो, अगर हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, है ना, और सांस लेने के लिए हमारे पास जो है वो वायु नहीं है और बिजली नहीं है, तो उसके बगैर जीवन संभव ही नहीं है.
1: ठीक है,
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी हमसे जुड़ने के लिए.
1: धन्यवाद.
0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी. कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
2: हेलो मैम, नमस्कार.
0: जी नमस्कार,
2: मैं सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ जी, पिंजौर से.
0: जी सुरेंद्र जी स्वागत है आपका. क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम में?
2: मैं कहना चाहता हूँ मैम, देखो पानी और बिजली ये तो हमारी जो हम जितना भी हम बचाएंगे वही हमारे अपने बच्चों के लिए हम रखेंगे
0: जी.
2: यदि हम नहीं बचाएंगे तो वो परेशानी में आएंगे फिर
0: जी.
2: तो ये तो बहुत ही जरूरी है पानी और बिजली. तो अब ये तो नहीं है कि बाहर बैठे पंखा चल रहा है उसका तो कोई, वो तो वेस्ट ही जा रहा ना.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
2: तो उसको जब हम आएंगे अंदर पे चला लो जरूर, थोड़ा एक नुकसान ही है दोनों तरफ से. पंखा भी गर्म हो जाता है, फूक भी सकता है, लाइट तो जा ही रही है, पंखे को भी खतरा है, चलता रहता है
0: जी.
2: और पानी जो है देखो मैम, हमें प्यास लग, एक गिलास पानी मिल जाए तो हमें कितना सुख शांति मिली है. हम पानी खिंडाते तो वो तो बड़ा दर्द होता है मैम, बहुत ज्यादा दर्द होता है.
0: देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुरेंद्र जी. हम बिना खाने के चाहे कितने दिन जीवित रह लें, है ना, लेकिन पानी के बगैर जीवित रहना असंभव है.
2: हाँ, एक गिलास पानी मतलब प्यास लग रही हो और हमको एक गिलास पानी मिल जा
0: जी,
2: तो कितना सुकून और कितना ठंडक और कितना दुआएं देते हैं हम.
0: बिल्कुल. और पानी की जगह आप चाहे हजार कोई भी और पेय पदार्थ भी लें, लेकिन जो पानी की प्यास है वो पानी से ही बुझेगी.
2: हाँ, प्यास पानी से ही बुझेगी. जो मर्जी पी लो आप, जैसा मर्जी कर लो, प्यास जो पानी पी लिया हमने
0: जी
2: तो सुकून मिलता है, शरीर को भी सुकून मिलता है.
0: बिल्कुल.

0: शरीर को सुकून मिलता है और हमारी प्राणों की रक्षा भी पानी करता है। इसीलिए शायद कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना देह भी त्यागता है तो उसके मुंह में भी हम जल ही डालते हैं।
1: देखो मैम, पानी तो मुझे ये तो एक बस हमारे लिए जिंदगी यही है मैम।
0: बिल्कुल,
1: क्या कहूँ मैं, जिंदगी यही है, पानी के अलावा कुछ है ही नहीं है।
0: जी बिल्कुल,
1: पानी की पानी है,
0: पानी की एक एक बूंद अमृत समान है और हमें इस बात को बहुत ही गंभीरता से अब लेना चाहिए, क्योंकि देखिए बदलते परिवेश में पानी भी कम हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे संसाधन जो है वो हमारे पास।
1: मैम नहीं, भाई तो सुधर नहीं पाता ना, भाई तो सुधर नहीं पाता ना
0: जी।
1: पानी पूरी ज्यादा वेस्ट बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं वेस्ट
0: जी। हम देखते हैं कि हमारे आसपास नल खुले हैं, है ना, नल खुले रहते हैं लोगों के, कई बार ऐसा देखा
1: जाता है। करते हैं, बोलते हैं तो कहते हैं बिजली का बिल मेरा है, पानी मेरा है, ये बोलते हैं।
0: देखिए कितनी गलत धारणा है ना ये सुरेंद्र जी, ये बात जो है ना, जब कोई कहता है तो उनको एक बात समझानी चाहिए कि बेशक बिल आपका है, लेकिन संसाधनों पर सभी का एक समान अधिकार होता है, ये सबके हैं, ये किसी एक व्यक्ति के नहीं है। बिल आपकी पॉकेट से जाए, मेरी पॉकेट से जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संसाधन सभी के हैं। अगर आपने

0: है और हमें इस बात को बहुत ही गंभीरता से अब लेना चाहिए, क्योंकि देखिए बदलते परिवेश में पानी भी कम हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे संसाधन जो है वो हमारे पास
1: मैम नहीं सुधर नहीं पाते ना
0: जी।
1: पानी पूरी ज्यादा वेस्ट बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं वेस्ट
0: जी। और हम देखते हैं कि हमारे आसपास नल खुले हैं, है ना, नल खुले रहते हैं लोगों के, कई बार ऐसा देखा जाता
1: है। नहीं करते अच्छा, बोलते हैं तो कहते हैं बिजली का बिल मेरा है, पानी मेरा है, ये बोलते हैं।
0: देखिए कितनी गलत धारणा है ना ये सुरेंद्र जी, ये बात जो है ना, जब कोई कहता है तो उनको एक बात समझानी चाहिए कि बेशक बिल आपका है, लेकिन संसाधनों पर सभी का एक समान अधिकार होता है, ये सबके हैं, ये किसी एक व्यक्ति के नहीं है। बिल आपकी पॉकेट से जाए, मेरी पॉकेट से जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संसाधन सभी के हैं। अगर आपने उतना पानी बर्बाद कर दिया जितना कि हो सकता है वो किसी और दो लोगों के घर में चला जाता है ना, तो वो किसी और के हिस्से का पानी आप वेस्ट कर देते हैं, इसलिए संसाधनों को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए।
1: बहुत ज्यादा मतलब वेस्टिंग होती है, लेकिन बोलता दुख होता है बहुत। अब मोटर चलते रहते हैं, पानी चलते रहता है नीचे, तो कई बार बोलते हैं सब मोटर बंद कर लो, सब करते हैं, नहीं चलता रहता है, मोटर चला के सो जाते हैं, बताइए कोई तरीका।
0: बहुत गलत वो है ये लोगों का जो ये एटीट्यूड हो गया है कि नहीं कोई बात नहीं, ये हमें सुधारना पड़ेगा। और हम शुरुआत अपने आप से कर सकते हैं कि हम वो सही जो है वो करें, है ना। और
1: जो आप ये विषय चलाते हो तो ऐसी बात नहीं है मैम, थोड़ा सा सुधार होता है, ये बात भी नहीं है सुधार,
0: इसका कारण भी है सुरेंद्र जी,
1: दो के कानून पड़ गए वो सुधर गया तो सबसे बड़ी जीत हमारी यही होगी।
0: बिल्कुल, और देखिए इसीलिए इन विषयों पर बात करना बार बार इसीलिए जरूरी होता है, क्योंकि जागरूकता बहुत
1: जरूरी है, करो अच्छी बात है
0: जी,
1: वही तो सुधरेगा
0: जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए,
1: धन्यवाद मैम।

0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम, इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से। हेलो चंडीगढ़।
1: हाँ जी, हेलो चंडीगढ़ जी।
0: जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
1: मैं पटियाले से बात कर रहा हूँ जी, पंजाब से जी।
0: जी अपना नाम बताएं।
1: शरण पल्ला जी।
0: एक बार फिर से बताएं, भल्ला जी?
1: हाँ जी, शरण पल्ला जी।
0: शरण भल्ला जी। जी भल्ला जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे आज बिजली पानी की बचत पर?
1: हाँ सुन रहा हूँ, लेकिन मेरी उम्र हो गई है जी 70 साल मैडम
0: जी।
1: मेरी उम्र जब 20 साल थी, मैं तभी से सुन रहा हूँ कि पानी बचाओ, बत्ती बचाओ
0: जी।
1: अगर लोग नहीं समझे तो मेरे को लगता है कि लोग नहीं है, इंसानियत है ही नहीं है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है, पानी बर्बाद करना और बत्ती बर्बाद करने का जी। जब भी देखो खंभों के जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं जग रही हैं, पानी की टंकी है लीक हो रही है, चल रही मोटरें पानी गलियों में चल रहा है, घर वाले तो समझ जाएंगे, बच्चे तो समझ जाएंगे, समझा लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को कौन समझाएगा मैडम जी? गवर्नमेंट तो गूंगी बनी बैठी है जी, क्योंकि खंभों की लाइटें देखो जग रही हैं, जब भी जाओ लाइटें चल रही हैं। घर के भी लोग कई हैं बत्ती छोड़ जाते हैं, मैं मानता हूँ कि अपने भी गलतियां हैं, लेकिन 50 साल से सुन रहे हैं कि ये खेती मत पानी वाली करो, लेकिन लोग नहीं समझ रहे जी।
0: देखिए भला जी, आपकी बात जो है, लोग भी बर्बाद करते हैं और कहीं सरकार से भी चूक हो जाती है, लेकिन हमें लगता है कि ये
1: बोलता हूं कि ज्यादा चूक है जी। इंसान तो चलो 50 साल से सुन रहा है, मेरे को लगता है कि जो भी फोन करते होंगे 50 साल के ही होंगे, लेकिन हर वर्ग को दुख होता है कि जब बिल आता है ना, बिल आता है तो दुख होता है, लेकिन बिल को देख के भी, एक तो किसी मुख्यमंत्री को बोला नहीं कि बत्ती फ्री करो, बत्ती फ्री करने से भी पंजाब का नुकसान हो रहा है, लोग बेपरवाह हो गए हैं
0: जी, जी।
1: और स्कूल कॉलेज को बिल्कुल बत्ती फ्री लगो, उनके घर में एसी लग रहे हैं, हीटर लग रहे हैं, तो बत्ती की तो गवर्नमेंट को बचत करनी चाहिए ना जी।
0: जी जी, देखिए
1: ये आम इंसान के हाथ में तो अपने घर का एक है ना जी।
0: बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कलेक्टिव एफर्ट की, देखिए चड्डा जी और भल्ला जी, कि हम सबको मिलकर इस ओर काम करना है ना। सरकार जो है वो अपना काम करेगी।

0: लेकिन हम जो कर सकते हैं हम
1: सरकार
0: वो
1: का
0: करेंगे।
1: स्ट्रीट लाइट बंद करनी चाहिए, पानी की टंकियां चल रही हैं, मैं अभी जाता हूँ आनंद नगर की तरफ, पानी की टंकी है वो चल रही है, वो बैठे हैं ताश पत्ते खेल रहे हैं पानी को, उसको बोलता चल रही है, अभी लोगों ने पानी भरना है
0: जी। देखिए तो क्यों, कोई व्यक्ति
1: तो
0: है
1: मोटर चला देता है,
0: ये कोई
1: 20 रुपए के देते हैं तो बोलते हैं हमने टंकी भरनी है शादी है मोटर चला दो, अभी एक टंकी भरने में मोटर चलेगी मो तो पानी तो जाया जाएगा
0: जी। लेकिन देखिए हम कोई भी पॉलिसी हो कोई भी काम हो है ना, पॉलिसी लागू कर सकती है चाहे वो सरकार हो चाहे कोई भी हो, ऊपर से नीचे आते आते जो व्यक्ति सबसे नीचे काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, इस पर किसका कंट्रोल है, ये हमें अपने आप से बात करके अपने आप को सही करना पड़ेगा। और हमारे और आपके जैसे लोग जब तक बात करेंगे और अपनी जो हमारे करेक्टिव मेजर्स हैं उनको लेंगे, हम बिजली पानी की बचत करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे।
1: लेते हैं टॉपिक हर बार लेते हैं, अच्छे टॉपिक लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ आम लोगों का भी हाथ है, जैसे मोटरसाइकिल पानी साफ बाजू में कर रहा है तो बाजू वाला भी बोलता है कि मैं भी मोटरसाइकिल धो लूं गाड़ी धो लूं
0: जी।
1: मेरे को मानना है कि चंडीगढ़ में जुर्माना लगता है गाड़ी धोने का।
0: देखिए बात वही है कि हमें हर चीज के लिए जुर्माने की क्यों वो करनी पड़ती है कि जुर्माना लगाएंगे तो हम सुधरेंगे, है ना, अपने आप से सुधार क्यों नहीं होता, इसीलिए बार बार इस पर बात करना बड़ा जरूरी है और जागरूकता लाना बहुत जरूरी है कि
1: जरूरी है जी, जरूरी एक, है, पर एक, लोग नहीं समझेंगे तो अपनी गलती है, लेकिन गवर्नमेंट को मैं तो गवर्नमेंट को ही गलती ज्यादा गवर्नमेंट को भी मैं तो कभी भी कोई प्रोग्राम होता है तो गवर्नमेंट का हाथ जरूर बीच में गलतियां होती
0: हैं। गवर्नमेंट के साथ साथ हमारा भी होता है, देखिए हमारा भी उतना ही भागीदारी है, सिर्फ गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती, ना वो हमारी भागीदारी के बगैर कुछ कर सकते हैं और ना हम उनकी भागीदारी के बगैर, इसलिए सबको, क्योंकि गवर्नमेंट में तो मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन देखिए आप देखिए कि हमारा देश कितना बड़ा है, कितने लोग हैं हमारे देश में, है ना, अगर हम सब डिसाइड कर लें कि हमारे घर से पानी की एक बूंद व्यर्थ नहीं जाएगी या बिजली बिल्कुल भी हम बर्बाद नहीं करेंगे। अब आज देखिए आप गर्मी के दिन है, घर में चार हैं, चारों कमरों में अलग अलग एसी चल रहे हैं,
1: जरूरत है जी, पानी की भी जरूरत है, बिजली बत्ती की भी जरूरत है
0: बिल्कुल, और हवा की भी जरूरत है, हमें साफ हवा की हर चीज की जरूरत है, हमें हर चीज को बचा के रखना है ना।
1: ठीक है मैडम
0: जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम आप सुन रहे हैं जी, आपका नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताइए।
2: हाँ जी सत श्री अकाल जी, मैं शेरगिल बोल रहा हूँ मोहाली तो।
0: सत श्री अकाल शेरगिल जी, क्या कहना चाहेंगे आज?
2: मैं तो यही कहना चाहना जी, पानी तो लोगों के ना लगता, पानी तो देखो मैं नंगल तो चलदा कई बारी, मैं देखदा जिन्ने भी साडे पुल ने नहरां विच समग्री सुट के पानी नहरां दा गंदा करिया पिया
0: जी,
2: इह पता नहीं किहड़े मतलब बंदे इन्हां नूं कहिंदे रहिंदे सी हर इक चीज पानी सुट दिओ, सिर दे बाल भी लोग पानी सुटदे ने
0: है।
2: बाकी मोहाली च मैं जद विचरदा मैं देखदा इत्थे जिन्ने भी टावर बन रहे ने फ्लैट बन रहे ने 100 फुट डूंगा खड्डा पड़ते ने, उत्थे 10 मोटर घट्टो घट 3 महीने 24 घंटे चलदियां ने, पानी कड कड के सड़कां ते रेन वाटर दे गटरां सुट्टिया जांदा, कोई किसे दा ध्यान नहीं है, पता नहीं किन्ना क पानी और रुखां दा खिच के ओह सुट दित्ता जांदा।
0: ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ
2: ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
0: ਜਿਹਦਾ
2: ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਰੂਲ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੀ, 500-400 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਧਰਤੀ ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ
0: ਜੀ। ਦੇਖੋ
2: ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਗਈ ਜੀ, ਪੋਚਾ ਮੈਂ 1 ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗਮਲੇ ਚ ਪਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ
0: ਜੀ,
2: ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ।
0: ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ।
2: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ।
2: ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਕਰਦੇ,
0: ਬਿਲਕੁਲ
2: ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਸਖ਼ਤ ਨੇ,
0: ਬਿਲਕੁਲ
2: ਲੋਕ ਪਖੰਡ ਚ ਨੀ ਜੀਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।

जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल तुसी ठीक गल कही कि साढ़े जड़े लोग है वह पानी गंदा करते हैं और अपने जड़े साढ़े रिसोर्सिज है उन्होंने गंदा करने का कोई मतलब ही नहीं है। और बिल्कुल ठीक कह रहे थे हमारे ये लिसनर भी कि हमारे यहाँ पर सख्ती करनी ज़रूरी है, लेकिन बात फिर एक बार फिर से वहीं आ जाती है कि क्यों सख्ती करने की ज़रूरत पड़ती है सरकार को या फिर प्रशासन को। हम अपने आप से आत्ममंथन करके, आत्मचिंतन करके अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपने संसाधन हैं, उनको क्यों नहीं संभाल कर सहेज कर रख सकते, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, या फिर हम कोई भी चीज़ हो। पोल्यूशन जब हम फैलाते हैं, पानी को गंदा करते हैं, या फिर हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं, या बिजली को हम नहीं बचाते हैं। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अगर ध्यान में रख लें तो बहुत सारी बचत हम कर सकते हैं। हर घर में हर व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि हम सब जहाँ पर एक कमरे में बैठे हैं वहीं का पंखा, लाइट या एसी जो भी है वहीं का चलेगा, है ना। घर के जितने भी फालतू में हमारी लाइट्स चल रही हैं या फैन चल रहे हैं या एसी चल रहे हैं वो हम नहीं चलाएंगे। जहां बात आती है पानी की, पहली बात हम सब जब नहाते हैं अपने सुबह की दिनचर्या से अगर हम शुरू करते हैं, जो आप ब्रश करते हैं, ब्रश करने के लिए नल को खोलकर ब्रश ना करें, एक ग्लास में पानी भर लीजिए। एक ग्लास से आप अच्छे से ब्रश भी कर पाएंगे और पानी की बचत भी होगी और आपको ध्यान भी रहेगा कि हाँ भाई इतना ही पानी मैंने इस्तेमाल करना है। उसके बाद नहाने की बात आती है तो आप बाल्टी में पानी भरकर नहाएं शावर की बजाय। शावर से बहुत सारा पानी व्यर्थ चला जाता है, हमें ये महसूस भी नहीं होता जब हम शावर से नहाते हैं। बाल्टी का पानी लेकर इस्तेमाल करें। अच्छा, जब हम आरओ, आजकल सब घरों में देखा जाता है, आरओ के पानी को हम स्टोर कर सकते हैं, जो वो फिल्टर आउट करता है उसको हम पौधों में डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में झाड़ू पोछे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर जब हम बर्तन धोने की बात करते हैं तो नल का जो प्रेशर है उसे कम रखें, गाड़ी धोने के लिए पाइप का इस्तेमाल ना करें, बाल्टी में पानी लेकर गाड़ी को साफ करें। और हर रोज अपने घर के बाहर आपके जो गेट्स हैं, हमने देखा है कि कुछ लोग गेट्स को भी रोजाना धोते हैं, दीवारों को रोज धोते हैं, फर्श को रोज धोते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप उसकी जगह पोचे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन अगर जैसे कभी आंधी तूफान आ जाता है, बहुत धूल मिट्टी इकट्ठी हो गई है, एक दिन निर्धारित कर लीजिए, उस दिन आप धुलाई कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से सोचिए आप कितना पानी जो है वो व्यर्थ होने से बचा लेंगे, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें जो हम कर सकते हैं जिससे पानी और बिजली की बचत हम कर सकते हैं। बिजली का भी जब हम कहीं जाते हैं, मान लीजिए आप किसी कमरे में नहीं बैठे हैं तो वहां के सारे उपकरण बंद कर फिर वहां से निकलिए, फिर चाहे वो आपका घर हो या फिर आप अपने ऑफिस में हो। अगर आपका ऑफिस का केबिन है वहां पर आपने एसी ऑन किया है, लाइट्स ऑन है, सभी उपकरणों को बंद करके ही अपने कमरे से बाहर निकलें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर हम बहुत सारी बचत कर सकते हैं। हमारे में वो पावर अगर नहीं है कि हम जनरेट कर पाए, है ना, पानी को हम जनरेट नहीं कर सकते हैं, बिजली को हम जनरेट नहीं कर सकते हैं, मैं कॉमन मैन की बात कर रही हूँ, बचा कर हम उसे सहेज कर रख सकते हैं।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: इस समय आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर और ये है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं बिजली और पानी की बचत की। सोच समझ कर करें इनका उपयोग, बिजली पानी की किल्लत से बचें। तो बहुत से श्रोता अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और अब देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, अपना नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं।
4: मैं संजय सेक्टर 13 चंडीगढ़ से बोल रहा हूं।
3: जी संजय जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
4: मैडम, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जैसे मैंने फोन मिला रहा था ना, तो मेरे को मैसेज आ रहा था 25 दिन के

0: पास पैसा डबल ऐसे आ रहा था, मैं फिर काट देता था। मैं कहा शायद ये पता नहीं क्या है, मेरा तो ऐसे लगता रहा, मैं काटता रहा लगता रहा काटता रहा, फिर अंगेज जाता रहा। ये बड़ी मेरा पहली बार एक्सपीरियंस हुआ है सर भाई। इसका मतलब कि बैल जा रही है तो वो मतलब कि एडवर्टाइजमेंट सोशल मैसेज आएगा हमें
1: जी।
0: ऐसे मतलब कि बड़ा दिक्कत हुई, यानी फिर मैंने एक्सप्रेस। अच्छा तो मतलब एनर्जी के बारे में बात हो रही थी, तो ऐसा है कि एनर्जी तो यूज करनी करनी है, लेकिन सेविंग कैसे है? जैसे मैं अपने आप बताता हूँ कि मैं जो एसी है वो एक घंटा चलाता हूँ, तो बाकी जब उसके बाद मैं फैन ऑन कर देता हूँ, जब ठंडी ठंडा हो जाता है ना, फिर मतलब कि एसी बंद कर देता हूँ,
1: बहुत
0: फैन की हवा रूम में ठंडी वो होने लग जाती है, मतलब फिर सारा रात अपना आराम से सोते रहो। एक घंटे से ज्यादा यूज होने का मतलब ही नहीं है एसी का,
1: बहुत
0: जो सारा दिन की जरूरत नहीं है ये मैडम
1: जी। देखिए एसी का मतलब होता है एयर कंडीशन, यानी कि आप पूरे रूम की कंडीशन जो है उसे चेंज कर दें, यानी ठंडक आप अपने कमरे में जो है उसे बढ़ा दें। तो वो उसका काम यही है कि आपके रूम में जब ठंडक हो गई उसे बंद करके आप फैन से उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी
0: पहले, हाँ उसका फार्मूला ये मैडम, पहले नहीं बंद करना है एसी, फैन को ऑन करके
1: जी
0: वो रोटेट ठंडी हवा हो जाती है, फिर वो एसी बंद करना है, नहीं तो फिर वो बात बनेगी नहीं। मतलब कि ये
1: आपकी बात बहुत जल्दी से समझ में आ गई, क्योंकि हमारे घर पर हम भी ऐसा ही करते हैं कि कुछ देर एसी चलाकर और रूम को ठंडा करके और फिर पंखा चलाकर वो हवा जो है वो अंदर की ठंडी ही रहती है।
0: तो हाँ जी, तो मैंने यहाँ अपने लोकल में देखा तो सारी सारी रात चलता रहता, मैं सोचता हूँ कैसे बर्दाश्त करते हैं लोग
1: जी। लोग एसी को सजा बना देते हैं, इतनी ठंड हो जाती है कि फिर वो कंबल और रजाई लेकर सोते हैं,
0: कंबल रजाई लेकर सोते हैं, उसका फायदा क्या
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए,
0: धन्यवाद।
1: और देखिए एसी हो चाहे फिर पानी की बात हो, हम पानी और बिजली दोनों की ही बात आज कर रहे हैं, और अलग अलग तरीके हैं। और एक तरीका इन्होंने भी बताया कि कमरे को ठंडा कर लिया जाए और उसके बाद एसी को कर दिया जाए बंद, और फिर रूम ठंडा रहता है तो आप पंखा चला सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ठंडक में भी हम नहीं सो पाते हैं, एसी का टेम्परेचर वैसे तो अब जो फ्यूचर ACs आ रहे हैं उनका एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जो कि उससे कम नहीं होता है, शायद 26 डिग्री जो है वो तय किया गया है, ताकि उससे नीचे ना जाए और हमारा जो हमारी जो लेयर है उसको भी नुकसान ना हो और एनवायरनमेंट को भी एसी की जो गैसेस निकलती हैं उनसे नुकसान ना हो। उसका ख्याल भी हमें रखना है कि ज़्यादा देर भी हम एसी ना चलाएं, क्योंकि बहुत देर एसी में बैठने से हमें भी बीमारियां लगती हैं, है ना। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बचत भी हो और हमारा भी फायदा, और साथ साथ बिल की भी तो बचत होती है, वो भी तो हमें ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगले कॉलर क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। और एक कॉल आते आते चली गई। तो दोस्तों आप भी हमें बता सकते हैं कि कैसे आप पानी की बचत करते हैं, बिजली की बचत करते हैं, और ये बात हम बार बार बार बार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली जो जनरेशन है उसको भी ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम वापस नहीं ला सकते। जैसे कि बिजली पानी बर्बाद हो गया तो वो वापस नहीं आने वाला, वक्त भी ऐसी ही एक चीज़ है जिसे हम वापस नहीं ला सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको वक्त पर समझना बहुत ज़रूरी है। और आज पानी की जो बढ़ती हुई हमारी जो डिमांड है उसको देखते हुए पानी जो भी हमारे पास है या बिजली जो भी हमारे पास है उसको सही से इस्तेमाल करना, सूझबूझ से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है, है ना। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बात कर रहे हैं।
2: नमस्कार
1: जी। नमस्कार,
2: मैं सतपाल सिंह बिंद्रा चंडीगढ़ से।
1: जी बिंद्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम में बिजली पानी की बात कर रहे हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं उसके बारे में।
2: पहले तो एक महीने बाद मेरी कॉल की है
1: जी जी,
2: आज मैं बहुत खुश हूँ
1: जी। हम भी बहुत खुश हैं कि आपकी कॉल लग गई।
2: अच्छा, बिजली पानी की बचत कैसा है मैडम
1: जी?
2: सरकारें तो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, जैसे चंडीगढ़ में सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित किया जा रहा है
1: जी,
2: और ये जो बिजली हमें मिलती है ये फॉसिल फ्यूल से मिलती है, जो कि कोयले से बिजली बनाई जाती है
1: जी,
2: कोयले से हीट जनरेट करके, स्टीम जनरेट करके
1: जी जी।
2: तो ये कोयले की उपलब्धता जो है एक सीमित है,
1: बिल्कुल,
2: जो झारखंड एमपी से कोयला पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया में आता है और बिजली बनाई जाती है
1: जी।
2: कोयले का स्टॉक कम होता है तो बिजली का संकट गहराने लगता है,
1: बिल्कुल।
2: तो इन बातों को

0: ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर हम जहाँ जहाँ ऑफिस में घर में जहाँ जहाँ बिजली बचा सके, ये एक हमारा उत्तरदायित्व है देश के प्रति।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारा जो दायित्व है देश के प्रति, जहां भी हम जाएं, जैसे भी, चाहे घर पे हों बाहर हों, हमेशा हमारे जहन में ये चीज़ रहनी चाहिए कि हमें बिजली पानी या कोई भी संसाधन जो है उसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है।
0: जी, तो जी। ये लोगों को तब समझ आएगी। मैंने ये देखा है पावर प्लांट में कठिन परिस्थितियों में वो काम करते हैं
1: जी,
0: गर्मी में सर्दी में, और बिजली का उत्पादन करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये हमारे घरों में आ जाती, स्विच ऑन किया, बत्ती जल गई, लेकिन उसके पीछे कितना काम है, कितना समस्याएं हैं
1: जी,
0: इनको हम समझें तब हम उसकी कदर कर सकते हैं।
1: देखिए, अगर थोड़ा बहुत, अगर हर कोई थोड़ा सा चिंतन करने लगेगा ना, जैसा कि आपने कहा कि कोई भी काम जो है वो उसको हम तक, या कोई भी जो फैसिलिटी है उसको हम तक पहुंचाने में बहुत से लोगों का योगदान रहता है ना,
0: बहुत परिश्रम है और जी परिस्थितियों में वो काम करते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत कठिन परिस्थितियों में करते हैं, और हम अपने घर में ठंडी हवा में बैठकर बहुत बार होता है कि हम क्रिटिसाइज कर देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी व्यक्ति को या किसी को भी, कि उसने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, है ना, और सोचते भी नहीं है कि वो चीज हम तक पहुंचाने में कितने लोगों की मेहनत लगी है। तो उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, और ये बहुत अच्छी बात आपने उठाई।
0: और ये जल का जो जल संसाधन है ये भी मैडम सीमित होते जा रहे हैं। खारा जल तो हमारे देश में प्रचुर मात्रा में है
1: जी,
0: और हम कभी दुबई या मिडिल ईस्ट में जाएं तो जल का क्या, जल को किस तरह संजो कर रखते हैं, जल की, जल का क्या महत्व है
1: जी,
0: वो हम समझ पाएंगे।
1: बिल्कुल, जहां पर पानी की कमी है, खारे
0: जल को पीने लायक बनाकर और उसको बूंद बूंद बचाकर वो अपना काम चलाते हैं
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने बहुत अच्छी बात की और कॉल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू।

0: इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी
1: दीदी नमस्ते।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: शिवा तिवारी सत्यन्ना पंचकुला हफ्ते ग्रीन होटल से।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे शिवा जी आज?
1: दीदी आज के प्रोग्राम का है, मैं तो फोन लगा दिया।
0: प्रोग्राम नहीं सुना था?
1: जबकि आज का है टॉपिक क्या है?
0: आज का टॉपिक है बिजली पानी की किल्लत से बचें, सोच समझकर इनका उपयोग करें।
1: दीदी वो मोदी जी भी आज बात कहा था कि जब आदमी को हर एक चीज बचाना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ बहुत जगह पंखा वो चलता रहता है, कोई उसके नीचे है नहीं, और वो पानी का नल खुला रहता है, कोई बंद करने वाला भी नहीं होता। तो हमने जो कर देता हूँ सबको बोलता हूँ तो पानी जो जरूरत है उतना भर के जाए। और वैसे वो पुरुष चलता है तो नल तो खोले है, बाल्टी भरा है, गिरता है, तो ये सब कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि पानी का कीमत जब भी मालूम पड़ता है, जब वे नहीं आता है, मिलता नहीं है,
0: बिल्कुल
1: तो कीमत वो समझते हैं जी सब लोग।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जब पानी नहीं मिलता तो हमें उसकी कीमत जो है वो समझ में आती है।
1: कभी कोई मालूम पड़ता है कि हाँ पानी का कीमत क्या, और जब आता है तो उसका कीमत जीरो, कुछ नहीं समझते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजली है, पानी है, अपना बिल भी देखो, पानी का भी आता है, बिजली का भी आता है, तो ये सब देखना चाहिए सबको कि ये पानी जो फालतू में जाता है बेस्ट, तो इसका तुम्हें जरूरत क्या की दस तुम्हें करे, जो जरूरत है उतना भर, चाहे गैस तुम्हें चलाओ तो गैस भी जलते रहता है।
0: जी
1: सब गलत बात है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने शिवा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए, धन्यवाद।
1: ठीक है जी, नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम
0: जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताएं।
1: रविंदर कुमार बोल रहा हूँ मैडम, गुराया डिस्ट्रिक्ट जालंधर से।
0: रविंदर जी, आपकी आवाज कुछ कम आ रही है जी, जालंधर से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: हाँ जी, बिजली पानी के बारे में बात हो रही है
0: जी।
1: तो देखो, जीवन को चलाने के लिए तो जो है पानी की सख्त जरूरत है
0: जी,
1: और अपनी पूरी जिंदगी दबाने के लिए और जिंदगी को बसर करने के लिए बिजली की भी उतनी जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: दोनों ही चीजें मतलब हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। दोनों को बगैर जो जिंदगी की रफ्तार है वो धीमी हो जाती है
0: जी।
1: तो हमको चाहिए कि हम दोनों चीजों की जो बचत है वो करें। जो आज हम बचत करें तो कल हमारे काम आएगी।
0: बिल्कुल, आज की बचत जी।
1: लेकिन जो पानी बिजली की दुर्बरत हो रही है ना, वो बहुत ज्यादा हो रही है
0: जी।
1: हम बात तो बहुत करते हैं लेकिन हमारे दिनचर्या है जो 15-20 बाल्टियां घर के आगे फेंकने के बगैर शुरू नहीं होती।
0: सही
1: बात, इससे परहेज करना चाहिए। पुराने जमाने में लोग झाड़ू लगाते थे और थोड़ा बहुत पानी वैसे ही छिड़क देते थे ऊपर से। तो अब जो झाड़ू का काम है वो लोग पाइपों से लेते हैं, पानी से लेते हैं। तो

0: से पानी बहुत बर्बाद होता है, और इसी तरह बिजली भी है, बिजली की भी दुर्बत तो रोकनी चाहिए। तो मतलब जो भी चीज है वो बैलेंस रखनी चाहिए, जैसे एसी भी आपने पहले भी बात की है कि एसी को बरतो करें, उसकी दुर्बरतो मत करिए
1: जी,
0: दिन में 4-5 घंटे बस चलाइए 24 घंटे में, और कमरा ठंडा कीजिए और फिर पंखे का मजा लीजिए।
1: बिल्कुल,
0: तो ये नहीं कि 24 घंटे मैंने लोग देखा है एसी चलाते हैं और रात को रजाई लेके सोते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये जो बिजली की दुर्बरतो हो रही है बहुत ज्यादा, तो इससे सबको परहेज करना चाहिए। और हम सुबह सवेरे जब भगवान के आगे ना माथा टेकते हैं, तो भगवान से यही मांगा करें कि भगवान हमको इतनी शक्ति दे कि हम बिजली और पानी की कोई भी ऐसे तरीके से दुर्बरतो ना करें, और हमको शक्ति दे कि हम इसकी बरतो अच्छे तरीके से करें और कल के लिए भी हम बचाएं, तो तभी हमारी जो जिंदगी है आगे की वो आसान हो सकती है।
1: जी बिल्कुल, सही संदेश आपका रविंद्र जी, और आखिरी कॉल आज की आपकी, और संदेश भी बहुत अच्छा कि भगवान से भी हम यही प्रार्थना करें कि हमें सद्बुद्धि दें कि हम इन संसाधनों को बचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद,
1: धन्यवाद,
0: धन्यवाद।

0: और श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम का वक्त समाप्ति की ओर है। और जाने से पहले आपको बता दें कि आज कार्यक्रम में हमने बिजली और पानी की किल्लत से बचने की बात की। सोच समझकर करें इनका उपयोग, बिजली पानी की किल्लत से बचें, ये था हमारा आज का विषय। और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया। अब शालिनी को दीजिए कार्यक्रम से जाने की अनुमति। नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़।

FM 107.2 MHz पर आप हैं विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र के साथ। वक्त है कार्यक्रम गाने सुहाने का। आगाज करते हैं गाने सुहाने का जंजीर फिल्म के साथ। आवाजें लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की, गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

नहीं पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

0: एक जरूरी सूचना सुनो, प्रसार भारती दे अधीन आकाशवाणी चंडीगढ़ विच नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम तहत साल 2026-27 लई अप्रेंटिसशिप ट्रेनी वजों सिख्यार्थियों नूं रखण दा प्रबंध किया गया है। चाहवान उम्मीदवार जिन्हां कोल इंजीनियरिंग या संबंधित विषय विच डिग्री होए इस सुनहरी मौके का लाभ लै सकते ने। सिख्यार्थियों नूं अप्रेंटिसशिप बोर्ड ऑफ इंडिया नवी दिल्ली दे पोर्टल ते रजिस्ट्रेशन करवाउणा लाजमी है। योग सिख्यार्थियों नूं जुलाई 2026 तों सिखलाई दा मौका दिता जाएगा। वधेरे जानकारी लई आकाशवाणी चंडीगढ़ नाल संपर्क करो। साडा टेलीफोन नंबर है 01722606125। सूचना समाप्त हुई।
1: श्रोतों, कार्यक्रम गाने सुहाने का आप आनंद उठा रहे हैं और आपको हमने हंसते जख्म फिल्म का गीत सुनाया मोहम्मद रफी और एस बलबीर की आवाज में। गीतकार थे कैफी आजमी, संगीतकार मदन मोहन। और अगला गीत पेश कर रहे हैं धर्मवीर फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और मधुर संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम गाने सुहाने का आप आनंद उठा रहे हैं और कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं नगीना फिल्म से मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौड़वाल की आवाजों में। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस गीत के साथ अब रतीश कुमार को यहीं पर गाने सुहाने कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। वक्त है कार्यक्रम शेरो नगमा का।

श्रोताओं, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें शब्दों की खुशबू और संगीत की मधुरता मिलकर दिल को छू जाती है। वो कहते हैं, लफ्ज अगर दिल से निकले तो असर रखते हैं, नगमे रूह से जुड़ जाएं तो सफर बन जाते हैं, शेरों की महक और सुरों की मिठास जब साथ चलती है तो सुनने वालों के दिलों में नई दुनिया बस जाती है।

उनके साथ की एक आस बाकी है, वो मिल जाए इस जन्म में हमें ये प्यास बाकी है। ना आए वो हमसे मिलने इस शहर में, फिर भी ना जाने उनके एक पैगाम के लिए ये सांस बाकी है।

कार्यक्रम शेरो नगमा का आप आनंद उठा रहे हैं। दोस्तों कहते हैं कोई आंखों आंखों से बात कर लेता है, कोई आंखों आंखों में मुलाकात कर लेता है। बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना जब कोई खामोश रहकर भी सवाल कर लेता है।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।

0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र और आनंद उठा रहे हैं इस समय कार्यक्रम शेरो नगमा का। दोस्तों, चांद चौदहवीं का हो तो रात और भी हसीं हो जाती है, और जब किसी की याद साथ हो तो हर चांदनी गजल बन जाती है। और शेर जो है वो शायर के जुबान से अपने आप ही निकल आता है कि चांद निकला था फलक पर अपनी पूरी शबाब लेकर, सितारे भी सज गए थे रात का हिजाब लेकर, मगर दिल की महफिल में कुछ कमी सी रह गई, किसी अपने की याद आई बे इंतहा हिसाब लेकर।

0: इस खूबसूरत गजल के साथ अब रतीश कुमार को कार्यक्रम शेरो नगमा यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत।
1: शेरो नगमा
0: एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
4: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
2: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है।

0: महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और जीएसटी के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मादेवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और इधर दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
2: है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का आगाज कर रही हूँ मैं नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। लीजिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में आनंद बख्शी के मुकेश की आवाज में ही गीत है। फिल्म का नाम है आनंद, गुलजार के बोल है और सलील चौधरी का संगीत। आइए आपको बता दें कि जैसे कि आज जो हम थीम ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कहते हैं। कहते हैं कि सपने ही वो रंग हैं जो हमारी आंखों में बसकर जीवन को नई दिशा देते हैं। कुछ सपने मुस्कान बनकर आते हैं तो कुछ उम्मीदों का दीप जलाते हैं और कुछ हमें अपने प्रियजनों की यादों से जोड़ देते हैं। आज के इस यादों की महफिल कार्यक्रम में हम सुनेंगे ऐसे ही मधुर गीत जिनमें सपनों की दुनिया बसी है। आइए चलते हैं ख्वाबों और सुरों के इस खूबसूरत सफर पर। तो लीजिए जैसा कि आपको बताया मुकेश का गाया गीत आनंद फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं।
3: मैंने

सपनों की खास बात क्या है जानते हैं साथियों? खास बात यह है कि शायद जिन लोगों को अब हम असल जिंदगी में नहीं देख सकते, या फिर ऐसी कुछ हमारी महत्वाकांक्षाएं जो हमारी असल जिंदगी में पूरी नहीं हो पाती हैं, वो कहीं ना कहीं हम सपनों के जरिए उन खुशियों को पा लेते हैं, उन लोगों से मुलाकातें कर लेते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए, और सपने में हमें पता भी नहीं चलता कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो सपना है या सच, हमें तो वो सच ही लगता है। इसलिए सपने हमेशा ही अच्छे लगते हैं, तब तक जब तक वो खुशनुमा सपने हैं। आइए इसी के साथ सुनते हैं झुक गया आसमां। इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत। कौन

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और आज का यादों की महफिल कार्यक्रम केंद्रित है सपने इस थीम पर। तो आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं राजेश रोशन और अमित खन्ना का लिखा ये गीत। धुन बनाई है राजेश रोशन ने, आवाज है किशोर कुमार और मन्ना डे की, फिल्म का नाम मक्कार।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में, समीर की रचना थी और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सत्य फिल्म का ये गीत, आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं, रचना है गुलजार की और तर्ज बनाई है।

कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति का गाया ये गीत सुनिए, जिसे रचा है संजय छैल ने, जतिन ललित का संगीत है और इस गीत ये गीत है फिल्म खूबसूरत से।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

लक बाय चांस इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शंकर महादेवन की आवाज में, बोल थे जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ब्रदर्स फिल्म का गीत, सोनू निगम और नीति मोहन की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल अजय अतुल का संगीत।

तो साथियों, सपनों से सजे इन गीतों का ये सफर यहीं पर विराम लेता है। उम्मीद है इन मधुर धुनों ने आपके मन में भी कुछ खूबसूरत ख्वाब जगा दिए होंगे। फिर मिलेंगे नई थीम और नए गीतों के साथ। अब दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। दोस्तों आइए अब आपको बता दें कि आज कौन कौन से कार्यक्रम आप इस फ्रीक्वेंसी पर सुन सकते हैं। एक बजकर पांच मिनट पर आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ केंद्र से। एक बजकर दस मिनट पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक पंजाबी समाचार आकाशवाणी जालंधर केंद्र से। एक बजकर पंद्रह मिनट पर फिल्म संगीत पेश किया जाएगा। एक बजकर तीस मिनट पर सुरीला सफर कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से पेश किया जाएगा। दो बजकर पंद्रह मिनट पर हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं। दो बजकर तीस मिनट का समय रहेगा सदाबहार नगमे कार्यक्रम का। तीन बजे का समय रहेगा सखी सहेली कार्यक्रम का।

शाम 4 बजे आज कार्यक्रम पिटारा में सेहतनामा में जीवन शैली और योग के बारे में आप जानेंगे। पांच बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं हिंदी समाचार। 5:05 पर फिल्म संगीत का आप आनंद उठा सकते हैं।

5:30 पर आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 6:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पेश किए जाएंगे। 6:05 पर आप सुन सकते हैं गैर फिल्मी गीत।

शाम 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार और प्रादेशिक पंजाबी समाचार का समय रहेगा 6:20। शाम 6:30 पर आप सुन सकते हैं समाचार समीक्षा, 6:35 पर आप

0: आनंद उठा सकते हैं पंजाबी गीत का। सात बजे का समय रहेगा कार्यक्रम जयमाला का। 7:45 पर प्रादेशिक मुख्य समाचार पेश किए जाएंगे और 7:47 का समय रहेगा पंजाबी गीत का। रात्रि 8 का समय रहेगा कार्यक्रम हवा महल का, जिसमें आज पेश की जाएगी झलकी नीम हकीम, लेखक राजकुमार वाल्टर और निर्देशक गोपाल सक्सेना। पर चित्रलोक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। 8:45 पर समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं। 9 का समय रहेगा आपके लिए कार्यक्रम का। 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आज के फनकार, जो कि केंद्रित रहेगा अभिनेत्री गायिका सुरैया पर। 10 आप सुन सकते हैं छाया गीत कार्यक्रम और 10:30 पर प्रादेशिक हिंदी समाचार पेश किए जाएंगे। दस बजकर 32 का समय रहेगा सुर सांझ कार्यक्रम का। तो श्रोताओं, ये हैं तमाम कार्यक्रम जो आज आप इस फ्रीक्वेंसी पर सुन सकते हैं। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक हिंदी समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ केंद्र से और उसके बाद प्रादेशिक पंजाबी समाचार आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक अग्निकांड में पूर्ण रूप से बर्बाद दुकानों के मालिकों को 5-5 लाख रुपए, बाकी दुकानों के मालिकों को 2-2 लाख रुपए और जली रेहड़ियों के मालिकों को 50-50 हजार रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की है। ये राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अग्निकांड में तबाह हुई दुकानों का निरीक्षण करने के उपरांत प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात के दौरान ये घोषणा की। मुख्यमंत्री अग्निकांड में मारे गए कपिल, सौरभ व अमन के घर भी गए और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। शहरी स्थानीय निकाय के रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित दुकानदारों को अलग से मुआवजा दिया जाएगा। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प का ही देन है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दी गई। उनके नेतृत्व में देश में व्यापक बदलाव आए हैं। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह रविवार को भिवानी के गाँव सुहासड़ा में आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने आमजन का आह्वान किया कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए वो भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। सांसद ने कहा कि 2014 से पहले और बाद के भारत का अध्ययन करने से पता चलता है कि इन 12 वर्षों में क्या बदलाव आया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कल देर शाम फरीदाबाद सेक्टर 16 स्थित सनफ्लैग चौक के सौंदर्यकरण परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहर के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सेक्टर 16 मार्केट के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण की योजना भी तैयार हो चुकी है।
2: सेक्टर 16 की मार्केटर्स को एक मॉडर्न मार्केट किस तरीके से बनाया जाए उस पर काम चल रहा है। DPR बन गई है, बजट पास हो गया है, उसका टेंडर लगा हुआ है, जल्दी खुल जाएगा, 1-2 महीने के अंदर उसका काम शुरू कर देगा। और फरीदाबाद के अंदर बड़ी दिक्कत आती है, जब आंधी आ जाए, बरसात आ जाए, तेज हवाएं चल जाए, लाइट फुल हो जाती है, जितनी भी ये तारे हैं सारी की सारी अंडरग्राउंड हो जाएंगी।
1: उन्होंने कहा कि बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए 2,200 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। श्री विपुल गोयल ने जल भराव की समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में काफी सुधार हुआ है।

0: केंद्र सरकार के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत फरीदाबाद में स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बड़खल से विधायक धनेश अदलखा, फरीदाबाद जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा और अन्य गणमान्य अतिथियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद सभी ने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाई और नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान श्री गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसे लोगों की सोच और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और शुद्ध पर्यावरण स्वस्थ समाज की आधारशिला है तथा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करे। आज सोमवती अमावस्या पर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर तड़कसार ही देश के विभिन्न राज्यों से आए लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और सुख समृद्धि की कामना की। सरोवर के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों की आत्मा तृप्ति के लिए पिंडदान और जल तर्पण किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में स्नान और दान करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। स्नान के साथ साथ ये दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान हेतु भी बेहद विशेष माना जाता है। जींद जिले के ऐतिहासिक एवं महाभारत कालीन गांव पांडू पिंडारा में पवित्र पिंड तारक तीर्थ पर आज सोमवती अमावस्या के अवसर पर विभिन्न प्रांतों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान व तर्पण किया। तीर्थ परिसर और आसपास में लगे मेले में श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी भी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी गुरविंदर सिंह सहोता तो प्रादेशिक खबरां सुनिए। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राज यादव ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य राष्ट्रीय समागम 21 जून को कोलकाता में होगा, जिसकी अगवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस संबंधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करते हुए मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 का विषय सेहतमंद उम्र लई योग है। श्री यादव ने कहा कि योग लोगों को उम्र बदन के नाल नाल सेहतमंद, सरगर्म, स्वयं निर्भर और मानसिक तौर पर लचकीला जीवन जीवन में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पंजाब के राजपाल गुलाब चंद कटारिया ने फरीदकोट विखे संसद मैंबर डॉक्टर विक्रमजीत सानी द्वारा स्थापित स्किल डिवेलपमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। इस तो अलावा उन्होंने सरकारी बरजिंदर कॉलेज फरीदकोट में डॉक्टर सानी की सहायता नाल नवीनीकरण किए एस्ट्रोटर्फ हाकी स्टेडियम भी खेतर के नौजवानों को समर्पित किया। सन फाउंडेशन पंजाब वालों पंजवां हुनर विकास केंद्र स्थापित किया गया है, जो हर साल लगभग 1000 नौजवानों को मुफ्त हुनर सिखलाई और रुजगार सहायता प्रदान करेगा। इस मौके संबोधन करते हुए राज्यपाल कटारिया ने कहा कि यह हुनर विकास केंद्र नौजवानों आधुनिक विकास कार्यों में हुनर प्रदान करन और उन्हें बेहतर बनाने लिए आजीविका के मौके उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डॉक्टर सानी ने इस मौके भावुक पल दसदे कहा कि फरीदकोट मेरे लिए नक्शे से केवल एक स्थान नहीं बल्कि यह मेरी जन्मभूमि है, जिसने मेरे जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व और जीवन यात्रा को आकार दिया है। भारतीय हवाई फौज वालों कल चंडीगढ़ के अपने बेस रुपये डिपो विखे ट्राई सर्विसिज इनोवेशन और स्वदेशीकरण डिस्प्ले प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी ने भारतीय फौज, जल सेना और हवाई फौज के नवीनताकारी प्रोजैक्टों का प्रदर्शन किया, जिस में तिना सेनाओं में रख रखा, मरम्मत और संचालन समर्थाओं वधाने के उद्देश नाल तकनीकी हलों प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शन हैलीकाप्टर, जैमर आली तैयार की गई सारिया कार्डों में प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शन में तिना सेनावान की नवीनता प्रति वचनबद्धता और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण अनुसार स्वयं निर्भरता और तकनीकी तरक्की में उजागर किया। कपूरथला आबकारी विभाग ने सुल्तानपुर लोधी सब डिवीजन के पिंड तोती और लाटियों में छापेमारी की, वही मात्रा में नाजायज शराब के इसके उत्पादन लिए वरते जाने वाले उपकरण बरामद किए। आबकारी अधिकार सुरजीत सिंह चाहल ने दस्सिया कि कार्रवाई दौरान अधिकारियों ने दोवे पिंडों तो ड्रमों में स्टोर की लगभग 2000 लीटर लान और 70 लीटर नाजायज शराब।

0: पुराना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोताओं, फिल्म संगीत का आप आनंद उठा रहे हैं और कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में जुदाई फिल्म से। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और दोस्तों, फिल्म संगीत का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं छाया फिल्म से तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार सलिल चौधरी।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं सुरीला सफर विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
2: जी हाँ, तो पल वो शब्द था जो इस गीत में चुना गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है, ऊपर वाला पांसा फेंके नीचे चलते दाव। पंक्ति भाग्य और कर्म के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। भगवान या नियति जीवन की परिस्थितियां तय करती हैं। पासा फेंकना, इंसान धरती पर जीवित रहने के लिए अपनी बुद्धि और कर्मों से फैसले लेता है। एक साथी ने लिखा है, कभी धूप कभी छांव, आज बादलों की ओट में सूरज भी अटखेलियां सी कर रहा है। कभी धूप खिलखिला रही है तो कभी छांव अपना आंचल लहरा रही है। जी हाँ, यही तो बारिश की धीमी धीमी शुरुआत हो रही है। जब कभी लगता है कि बस अब तो बरसात आने ही वाली है कि जल्दी से सूरज दादा आकर अपने दर्शन दे देते हैं, और जब चिलमिलाती धूप पड़ने लगती है तो कहीं बीच में से ही हल्की सी फुहार आ जाती है। बहरहाल कार्यक्रम का आधा समय हो गया है और चलिए एक बार हम अपनी जो इबारत है उसे फिर से पढ़ देते हैं। यदि कोई साथी है जो फेसबुक पर नहीं है, एक बार फिर अगर सुनना चाहते हैं तो हमारी जो इबारत थी, कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है पर उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती छिपी होती है। सुबह की हल्की धूप, चाय का पहला घूंट और बिना वजह की मुस्कान, ये छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती है। हम अक्सर बड़े पलों की तलाश में छोटे पलों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खुशी कहीं दूर नहीं, हमारी रोजमर्रा के बीच ही छिपी होती है। बस थोड़ा रुककर उसे महसूस करने की जरूरत होती है। हर दिन एक नया मौका है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा जीने का। तो आइए इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में ये गीत फिल्म एहसास से। इंदिवर की रचना है, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।
3: जो न...

0: तो ये जो गीत था इसमें छोटे शब्द लिया गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है कि नेहा जी आप सवाल इस तरह से पूछें कि हम बिजी रहें, फिल्म का नाम पूछ सकते हैं, गीतकार पूछ सकती हैं, किस सन में ये फिल्म आई ये पूछ सकती हैं, हम बिजी रहेंगे। आपको लगता है इतने आसान सवाल हम पूछेंगे आपसे? क्योंकि ये सवाल तो कोई भी गूगल बाबा से देखकर, सोशल मीडिया की किसी भी साइट से देखकर जवाब दे सकता है। हमें वो बातें जानने में अच्छा लगता है जो हमें आपसे जानने को मिलती हैं, जो बातें यूनिक होती है आपके बारे में। जैसे कि देखिए, हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि हमारी जो मेड है वो भी आपका प्रोग्राम सुन रही है, उसे जो समझ आया आपका सवाल तो उसका जवाब सुनो। अभी कुछ दिन पहले घर से आते समय उसका मंगलसूत्र कहीं गिर गया, वो बहुत उदास हो गई, पर उसने सबका काम किया और वो वापस गई तो उसका वो मंगलसूत्र मिल गया। उसे जाते समय हमने कहा, एक तो आज तेरा फास्ट है और दूसरा तू हम सबका काम करके जा रही है और तीसरा तुमने किसी का कुछ गलत नहीं किया, तो पक्का तुम्हारी चीज तुम्हें मिल जाएगी। क्या बात है, हमें हमेशा ये लगता है कि देखिए जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। और देखिए आपके साथ हुआ भी, मंगलसूत्र जैसी चीज गिरना ना सिर्फ मतलब हमें एक मानसिक पीड़ा देता है, ये हमारे एक संपदा का भी नुकसान होता है, लेकिन देखिए आपको मिल भी गया। तो कभी कभी होता है कि हम बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, सोचते हैं, मगर जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जितना समय हमने चिंता में व्यस्त किया, चिंता में मतलब गवाया, उतना अगर हम उसके उसका जवाब ढूंढने में या हल ढूंढने में निकालते तो शायद परिणाम बेहतर होते। एक साथी ने लिखा है, सुबह की सैर पर जाते हुए और लौटते हुए सब्जी और फलों से भरे ठेले, कहीं फूलों की दुकान, किसी जानवर की अजब गजब हरकतें, फुदकते तरह तरह की चिड़ियाओं को देख कर भी मन बहुत हल्का महसूस करता है। कुछ समय प्रकृति के साथ गुजारना चाहिए, बहुत से दुख दर्द भूल जाते हैं, किसी से हल्की फुल्की बातें करके भी मन हल्का सा हो जाता है। वहीं पर एक साथी लिखते हैं, मराठी लेखक हैं पुल देशपांडे, कहते हैं हमारी उम्र तब तक है जब तक हम लोगों को याद रहते हैं। बस यही बात है, हम पल दो पल के मेहमान हैं, फिर भी दिल में जीते रहेंगे। और चलिए इसी के साथ सुनिए बातों बातों में इस फिल्म का गीत अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। अमित खन्ना ने इसे लिखा है, राजेश रोशन का संगीत।
1: उठ सबके कदम, देखो रंग।

साथी लिखते हैं, साधारण जीवन शैली का मतलब पीछे रह जाना नहीं होता, इसका मतलब है शोर कम करके असली आवाज को ही सुनना। जब प्लान कम होंगे तो पल ज्यादा मिलेंगे। छोटी छोटी खुशियां वही हैं जिन्हें जिनकी कोई डिमांड नहीं होती। चाय की पहली चुस्की से लेकर पहली बारिश में मिट्टी की वो सौंध ही खुशबू वाली खुशियां हम इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर की इच्छा तो बड़ी बड़ी खुशियों के इंतजाम में लगी रहती है, पर जिंदगी की बड़ी खुशियों की किश्तों में नहीं आती। जिंदगी की बड़ी खुशियां किश्तों में नहीं आती, वो हर रोज छोटी छोटी खुशियों में ही निहित होती है। और एक साथी ने पहले जो गीत हमने बजाया उसे लेकर लिखा है, जो छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में है वो। यही सही है, जिस घर में बीच का भाई या बहन हो उसकी यही मुसीबत होती है। अब आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि आपके इस कमेंट से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप भी घर में बीच वाले भाई हैं या बहन हैं। तो चलिए बताइए, क्या मुसीबत ऐसी होती है जब आप बीच वाले भाई या बहन होते हैं। तब तक सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज है, आनंद फिल्म का ये गीत है, योगेश ने इसे लिखा है और सलील चौधरी का संगीत। पिछले गीत का शब्द था खुशी और इस गीत का कहीं दूर।

जैसे कि हमने पूछा था अपने एक साथी से कि बीच के भाई बहनों की क्या समस्या होती है, तो उसके जवाब में एक साथी ने लिखा है, छोटे छोटे कामों के लिए हम बड़े हो जाते हैं और बड़े बड़े कामों के लिए हम छोटे होते हैं। जैसा जी चाहे घर वाले हमारा उपयोग कर लेते हैं। आपकी ये बात पढ़कर बड़ी हंसी आई मुझे, और सही कहा आपने कि होता है ऐसा। इवन एक उम्र ऐसी आती भी है जब हम अगर कुछ बच्चों जैसी हरकत करें तो डांट पड़ जाती है कि अब इतने छोटे हो क्या, और अगर कोई बड़ों के बीच में कोई बात कर ले तो तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि बड़ों में बात करो, ये भी हो जाता है। तो ये तो सब बातें होनी ही है। एक साथी ने लिखा है, हमने कई बार ऐसे कई काम देखे हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। एक बार हम गुरुजी के प्रोग्राम में नागपुर जा रहे थे और इतनी तेज बारिश की गाड़ी से जाना मुश्किल था स्टेशन तक। उधर ट्रेन राइट टाइम जो हमारी दोस्त स्टेशन पहुंच गई थी उसने कहा ट्रेन चलने वाली है, हम अपने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि अब आप ही हमें पहुंचाएंगे। वो हम कैसे पहुंचे नहीं पता, हम अंदर गए, हमारे सामने ही ट्रेन का डिब्बा और हम ऊपर चढ़े और ट्रेन चल दी। अब इसे क्या कहेंगे नहीं पता। जी हाँ, कभी कभी होता है कि हमें लगता है अब तो ये काम संभव ही

नहीं है, लेकिन किसी तरह कोई चमत्कार हो जाता है और असंभव काम संभव हो जाता है। एक साथी ने लिखा है, किसी भी काम और परेशानी में चिंतन करना ही समझदारी है। चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। बिल्कुल सही आपने कहा। और लीजिए अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है खट्टा मीठा, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की, गुलजार के बोल हैं राजेश रोशन का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, बीच वाले भाई या बहन को बड़ा भाई या बहन दोनों की सुननी पड़ती है। सब कहते हैं वो बड़ा है और वो तुमसे छोटा है, बेचारा चक्की में पिस जाता है। एक साथी ने लिखा, बचपन में एक कहानी या वाकया सुना था कि एक व्यक्ति बहुत टाइट जूते पहनकर बाहर जाया करते थे। घर आकर जब जूते उतारते थे तो उनको बहुत आराम महसूस तब वो बहुत आराम महसूस करते थे। लोगों ने सलाह दी कि थोड़े ढीले जूते पहने, तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि जीवन में कोई सुख नहीं है, जब मैं जूते उतारता हूँ तो बहुत सुख महसूस करता हूँ। देखिए, किसी के लिए कोई बात कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। शायद हमारे लिए वो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो किसी के लिए कितना सुकून देने वाली बात हो सकती है। आज का जो सुरीला सफर का कार्यक्रम है, हमें संपन्न करना होगा क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं दे रहा। बस इतना ही कहेंगे कि आज की संगीत यात्रा में हमने उन छोटे छोटे एहसासों को छूने की कोशिश की।

अक्सर भागती दौड़ती जिंदगी में नजरअंदाज हो जाते हैं। उम्मीद है कि इन गीतों ने आपके मन में कुछ मीठी यादें और कुछ सुकून भरे पल जरूर जगाए होंगे। चलते चलते बस इतना याद रखिए, जिंदगी की असली रौनक बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उन लम्हों में होती है जिन्हें हम दिल से जीते हैं। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

दोस्तों, मनुष्य के जीवन में पैसे का बड़ा महत्व है जो बढ़ता ही जा रहा है, और पैसे की बढ़ती अहमियत ने हर इंसान को कमाई के लिए दौड़ने पर मजबूर कर दिया है।

अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम धन अर्जित करते हैं। जरूरतें पूरी होने पर लोग जुट जाते हैं अपना सामाजिक स्तर बढ़ाने में, जिसके लिए और अधिक धन की आवश्यकता होती है, और इसी चक्कर में वे अपने करीबी लोगों से दूर होते जाते हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, मगर पैसे का गुरूर कतई अच्छा नहीं है।

जरूरतें पूरी करते करते हम अपनी इच्छाओं को पैसों से पूरा करने में लग जाते हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता। ऊंची अट्टालिका में रहने वाला नर्म बिस्तर पर भी रात भर सो नहीं पाता, और दिन भर मेहनत करके एक इंसान पत्थर की सेज पर गहरी नींद सोता है। एक संतोषपूर्ण जीवन ही समृद्ध जीवन है। मन

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया बेरंगूर, पिया है वहां सतैली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गद्दी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर

0: भारती पर हर पल है खाक।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
2: आज के फनकार
0: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
2: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
5: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
3: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा

0: और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 153,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 253,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट

0: का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, आरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की जबकि ट्यूनिशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोमा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे

0: क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुरैया के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम दिल लगी, शकील बदायूनी की रचना है, नौशाद अली का संगीत।

अल्फाज कमर जलालाबादी के ये गीत जो है इसकी तर्ज बनाई है हुस्नलाल भगतराम ने। सुरैया और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। फिल्म का नाम सनम।

नौशाद अली के संगीत निर्देशन में सुनिए शकील बदायूनी की लिखी ये रचना। सुरैया की आवाज, फिल्म का नाम दर्द।

0: प्यार की चुवन अपने पन का गांव छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विद्यार्थी फिल्म का गीत अब सुनिए मोहम्मद रफी और उषा तिमोथी की आवाज में। मधुकर बिहारी ने इसे लिखा है और बाबू सिंह का संगीत।

जिंदगी और मौत इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे महेंद्र कपूर की आवाज में, शकील बदायूनी की रचना और सी रामचंद्र का संगीत। आज के सदाबहार नगमे से इस गीत के साथ ही इजाजत दीजिए नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

0: ಹೇಳಿ. सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार.
1: सोनाली जी आपको भी और मेरे सभी श्रोताओं को सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार. कैसी हैं सोनाली जी आप?
0: मैं तो मजे में हूँ. और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सहेली हमें बहुत दिनों बाद बाजार में या कहीं अन्य जगह पर दिखाई देती है और उसके कुछ दिन बाद तुरंत दिखाई देती है, तो हम कहते हैं देखिए ऐसे तो हम मिलते नहीं है, और कभी कभी बार बार मिलने लगते हैं.
1: मिले तो अचानक फिर मिलने लगे. मैं जान रही हूँ कि आप मेरी ही बात कर रही हैं. पिछली बार ही हमारी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई और लो आज फिर हो गई.
0: तो ऐसी मुलाकातें बार बार होती रहे तो
1: अच्छा लगता है.
0: तो चलिए विषय बता दें आज के.
1: बिल्कुल, आज के विषयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं. आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस,
0: जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ना.
1: जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है. इसके बारे में मतलब ये एक गंभीर विषय है. हो सकता है हमें यूं बात करते वक्त लगेगा, हम कहते हैं कि ठीक है ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन सिर्फ बातें नहीं है, उन बातों को व्यवहार में भी लाना है.
0: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अगर झल्लाहट के कारण या फिर किसी अन्य कारणों से हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनसे हम दुर्व्यवहार यानी बस कुछ ऊंची आवाज में बात कर ले, उससे आगे तो क्षमा ही नहीं है. अगर ऐसा कुछ है तो उनसे तुरंत माफी मांग लेना भी बहुत जरूरी है. और इस विषय में हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, सखियों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखकर भेजे हैं.
1: जी हाँ, उनको भी हम जरूर पढ़ेंगे. अगला विषय किस बारे में है बताएंगी?
0: जी आज कथा सुधा, जिसका सभी श्रोताओं को इंतजार है, आभूषण भाग 3, जो हम सब मिलकर सुनेंगे. साथ ही बहुत जल्दी यानी कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है, तो उसके पहले क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए.
1: बारिश आने वाली है. सोनाली जी बस सुन ही रहे हैं कि बारिश आने वाली है. कब आने वाली है?
0: बस आएगी ना तो हम उसका बहुत खूबसूरती के साथ उसका स्वागत करेंगे. और हम कुछ ऐसा करेंगे बारिश के मौसम में, यानी खूब सारे पेड़ लगाएंगे. जो अभी हम जामुन खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, उन गुठलियों को हमें सहेज कर रखना है. और जैसे ही बारिश आएगी तो हमें खूब सारे पेड़ लगा

0: है ताकि हमें इतना इंतजार ना करना पड़े।
1: वही तो बस सुन रहे हैं, लेकिन बारिश आने के पहले हमें कुछ तैयारियां भी करनी है ना।
0: तो वो कौन सी तैयारियां हैं वो हमारे साथियों से हम गुजारिश करेंगे कि वो लिखिए आप कि आप कौन सी तैयारियां करते हैं। कुछ लोग अनाज को सुखाते हैं, कुछ घर की मरम्मत करवाते हैं, तो कुछ जो पेड़ है जिनकी टहनियां जो बहुत बढ़ चुकी है वो गिरने का डर है वो कटवाते हैं, क्या करते हैं आप, किस तरह से तैयारियां आपकी शुरू हो गई है उस बारे में हमें लिखकर बताइए। और साथ ही व्यंजनों का जब जिक्र चलता है तो आज हम उत्तर प्रदेश के व्यंजन, उसमें मक्खन मलाइयों और बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी।
1: क्या बात है, मेरे लिए तो इनमें से दो चीजें बिल्कुल नई हैं, तो आज नई जानकारी जानने को मिलने वाली है।
0: और आप क्या करना है,
1: एक गीत सुन लेते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: बड़ा ही सुंदर गाना था ये,
1: बहुत सुरीला गाना, और हमारे बहुत सारे सखियों ने और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा कि गाना बहुत पसंद आया। तो आप सभी को इंतजार है कथा सुधा का, तो
0: मुझे भी
1: है ना, मुझे भी। तो सुनते हैं आभूषण भाग 3।
0: जी
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना
4: मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते, प्रेम की शक्ति अपार है। पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया। प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। सुरेश समझ गए, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
5: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
6: जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
4: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही। अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।
2: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग।
4: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे।

शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थी। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपट ही से चला करता है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया।

0: कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए, शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई, फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप, चार प्राणियों का खर्च था। नाथित भी आते ही रहते थे, उस पर यह और मुसीबत हुई। मायके में एक फौजदारी हो गई, पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। दो छोटे भाई, एक बहन और माता, चार प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। प्रातः काल से कलह आरंभ हो जाता। समदिन समदिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत ना आती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते, बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठकुर सुहाती करती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वालों ही के हाथ में रहती है। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन। शीतला की मां कहती, चार दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाऊं। सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी और पीसते क्यों जान निकलती है। विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वो महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी मां के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। मां कहती, तूने यहां बुलाकर हमारा पानी उतार दिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती हैं। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। मां और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना न था। पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती, पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने ही द्वार पर खड़ा हो। उसके सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वो इसी नैराश्य के अवस्था में द्वार पर खड़ी थी। मुसीबत में, चित्त की उद्विग्नता में, इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी, आंखें मिल गईं। वो झिझक कर पीछे हट गई, किवाड़ बंद कर लिया। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वो अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी।
1: ओ शीतला, शीतला, क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती। विमल का मुद्दत से पता नहीं, बहुत संभव है कि वो अब संसार में ही ना हो।
0: किंतु वो इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वो उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हूं। अंत को लालसा की कपटलीला उन्हें भुलावा दे ही गई। वो शीतला के घर उस

0: का हालचाल पूछने गए। मन में तर्क किया,
1: ये कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी ना पूछूं। ओ शीतला, आ ये मनोहर छवि, ये अनुपम सौंदर्य। शीतला, ये प्राण और ये शरीर तेरी भेंट करता हूं। संसार हंसेगा, हंसे, महापाप है, हो कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता, वो मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल से ही मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है पता नहीं। शीतला, ओ शीतला।
0: अकस्मात वो ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानी से उनकी आंखें भर आईं। वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति क्षुब्ध खड़े सोचते रहे, फिर विजय ध्वनि से कह उठे,
2: कितना सरल है, इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही ये सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला, बहन, मैं तेरा भाई हूं।
0: उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
1: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी, मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूं।
3: भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी।

0: कई महीने बीत गए। संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल से उसी के वास्ते लाए थे। इतने में सुरेश आकर आंगन में बैठ गए।
1: कहां से आती हो भैया?
2: गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था, बाद को मालूम हुआ कि वो कोई और आदमी है। क्या करूं, इनाम और बढ़ा दूं?
1: तुम्हारे पास रुपए बढ़े हैं तो फूको, उनकी इच्छा होगी तो आप ही आवेंगे।
2: शीतला बहन, एक बात पूछूं, बताओगी?
1: हाँ।
2: विमल सिंह किस बात पर रूठे थे तुमसे?
1: कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे मेरे पास है क्या? मैंने कहा तो ब्याह क्यों किया? बस बातों ही बातों में तकरार हो गई।
0: इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहां अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी। कर्कश स्वर से बोली,
3: अरे बेटा, तुम तो घर के आदमी हो, तुमसे क्या पर्दा है? ये महारानी तो बस देखने की ही गुलाब की फूल है, अंदर सांप काटे हैं। अरे अपने बनाव सिंगार के आगे विमल की बात ही ना पूछती थी है। बेचारा वो तो इस पे जान छिड़कता था, पर इसका मुंह ही सीधा नहीं होता था। और प्रेम, प्रेम तो इससे छू ही नहीं गया। अंत को उसे देश से निकाल कर ही दम लिया इसने।
1: हाँ। क्या वही अनोखी धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना तो मर्दों का काम ही है।
2: यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहर से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो।
1: जिनके भाग्य में लिखा है वो यही सोने में लदी हुई है। मेरी तरह सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं।
0: सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला की मुख कांति मलिन हो गई है। पति वियोग में भी

0: गहनों के लिए इतनी लाल आई थे? बोले,
1: अच्छा बाबा, मैं बनवा दूंगा गहने तुम्हें।
0: ये वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो आईं, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जटित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा, मुंह से कुछ न बोली,

0: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग। पात्र परिचय कुछ इस प्रकार से है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है इसके लिए सुनिए अगले सोमवार को कथा सुधा का अगला अंक।
1: सोनाली जी, कमेंट्स पढ़कर पता चल रहा है कि कथा सुधा की आज की कहानी सभी को पसंद आई है।
2: हमको भी पसंद आई, आपको भी पसंद आई,
1: और इंतजार रहेगा इसके अगले भाग का
2: जी।
1: लेकिन बीच में गीत सुनिया जाए
2: तो सुनते हैं एक गाना।

0: नेहा, प्यार कुछ ऐसी ही चीज है ना, प्यार कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, कि जो हम देते हैं ना तो सामने से हमें बिल्कुल मिलता ही है वो प्यार,
1: और दुगना होके मिलता है।
0: बिल्कुल, दुगना क्या, चौगुना, आठ गुना होके मिलता है। क्योंकि हर इंसान को सिर्फ प्यार की, स्नेह की, यानी अच्छी बातों की इच्छा होती है ना।
1: बिल्कुल। और सोनाली जी, अब कार्यक्रम में एक अंतराल ले लें।
0: बिल्कुल लेते हैं।

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है
1: सखी सहेली।
0: और जैसे प्रेम स्नेह की बात चली थी, तो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहत होती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए,
1: बिल्कुल प्रेम से बात की जाए, थोड़ा उनके साथ बैठा जाए,
0: उन्हें वक्त दिया जाए, क्योंकि उस उम्र में आके उन्हें ना नए कपड़े या फिर ना घूमना फिरना या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे हम लोगों को, जैसे घड़िया या बहुत सारी महंगी महंगी चीजें, उन्हें किसी चीज से लगाव नहीं होता है, उन्हें सिर्फ इच्छा होती है कि उनके साथ में दो चार पल सुकून के साथ कोई बैठे, उनकी बातें समझे। और उम्र के साथ ऐसा होता है ना कि उनके कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, तो लोग छोटी छोटी बात को लेकर उन पर झल्लाने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
1: जी,
0: तो
1: विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहना सिखाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में लगा दिए। हम देखते हैं ना सोनाली जी, कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, वो हमें तब समझ नहीं आता, हम जब छोटे होते हैं तब हमें वो उतना जान नहीं पड़ता, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो जान पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और आज वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें हमारी जरूरत है। बुजुर्ग परिवार की वो मजबूत नींव होते हैं जिन पर रिश्तों की इमारत खड़ी रहती है, उनके पास जीवन का लंबा अनुभव, संघर्षों की कहानियां और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल सीख होती है।
0: लेकिन क्या होता है ना नेहा, कि बदलती जीवन शैली, व्यस्तता और कई सामाजिक कारणों से कुछ बुजुर्ग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं, और इसी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और बुजुर्गों के साथ होने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक पीड़ा पहुंचे, दुर्व्यवहार ही कहलाता है। यानी अगर आप जोर से बात करें, चिल्ला के बात करें, उनके ऊपर झुंझलाए, तो ये भी एक दुर्व्यवहार में ही गिना जाएगा।
1: अब देखने में भी ये भी आता है सोनाली जी, कि जब भी मोबाइल वगैरह पर कुछ नई चीज, हमारे घर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मोबाइल की कोई चीज हमसे सीखना चाहते हैं तो वो हमसे पूछते हैं। कई बार वो एक बार पूछने के बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, फिर तीसरी बार पूछते हैं, तो तीसरी चौथी बार में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, उन्हें कभी उल्टा जवाब दे देते हैं या फिर ऊंची आवाज में बात करके कह देते हैं कि कितनी बार बताया। लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम छोटे थे और उन्होंने भी हमें कितनी बार एक ही चीज सिखाई होगी, तो उसी तरह हमें भी बार बार वो चीजें उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में वो भूल जाते हैं, इसलिए शायद वो बार बार पूछते हैं।
0: या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उन्हें प्यार से समझा भी सकते हैं कि देखो अम्मा या बाबूजी, जब हम काम करते रहे ना, उस वक्त हम थोड़े अपना काम कर लेंगे, उसके बाद आपके साथ वक्त बिताएंगे, तो उस वक्त आप फिर सवाल ना पूछे, या फिर ये क्या होता, उन्हें नहीं पता होता, उन्होंने वो अपने बच्चों को अपने छोटे बच्चों जैसे ही समझते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठे तो क्या मूवी देख रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं, तो उन्हें प्यार से भी समझा के परिस्थिति को संभाला जा सकता है।
1: और सोनाली जी,

0: ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही कही, ये ना सिर्फ बुजुर्गों के साथ होता है बल्कि ये हमारे साथ भी होता है। कभी अगर हम मोबाइल लेकर बैठे हैं तो हमारे मम्मी पापा को भी लगता है कि गेम खेल रही है या पढ़ाई कर रही है, पता नहीं। अब उन्हें पता नहीं है, हो सकता है वो बेचारे सोचेंगे कि नहीं अभी अभी इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, पढ़ रही है फोन पर, पता चलता है गेम खेल रही। तो वही बुजुर्गों के साथ भी होता है, उन्हें नहीं समझ आता होगा कि अब फोन लेकर या लैपटॉप लेकर बैठे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं। ऐसा हो जाता है। उनकी बुजुर्गों की जो जरूरतें, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और भावनाओं को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका अपमान करना, कठोर शब्द बोलना या फिर उन्हें अकेला महसूस कराना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है।
1: बिल्कुल सही नहीं है कि कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा परिवार जो है हंस रहा है, खिलखिला रहा है और अम्मा को कम सुनाई देता है तो पीछे के कमरे में अकेली बैठी हुई। ये जो परिस्थिति है ना, बहुत निराशाजनक परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है नेहा कि उनकी संपत्ति या पैसों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें परिवार में महत्व देना है और घर परिवार के निर्णयों से उन्हें दूर नहीं रखना चाहिए। और ये जो बातें होती है ना, अगर ये बातें उन्हें अंदर से खोखला कर देती है कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि उस वक्त उनका जीवन साथी छोड़कर चला गया होता है, कभी तो वो जो अकेलापन होता है वो सचमुच उस दशा में आने के बाद ही हर इंसान उसे महसूस कर सकता है। तो अगर किसी के घर में इस तरह से कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और अब हमें क्या करना चाहिए नेहा?
0: एक गीत सुनना चाहिए।
1: हाँ, तो अगर वो रूठ जाए हमारी दादी अम्मा तो उन्हें गाना गा के मना भी लेना चाहिए।
0: बिल्कुल, मना लेते हैं।

0: दादी को तो मनाना ही पड़ता है क्योंकि पहले हम गुस्से में चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं, फिर बुरा लग जाता है तो मनाना पड़ता है।
1: और ऐसे अगर गा के दादी को अगर मना लिया तो दादी भी बहुत प्यार से मान भी जाएंगी, है ना।
0: एक साथी लिख रहे हैं, बुजुर्ग हमारे अतीत की धरोहर, वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रेरणा है। उनका सम्मान ही हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। आज की व्यस्त जीवन शैली में अक्सर बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रेम पूर्ण शब्द, थोड़ी सी संवेदना और सम्मान का व्यवहार उनके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है।
1: एक साथी लिखते हैं, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभवों की किताब होते हैं जिनके हर पन्ने पर जीवन की कोई न कोई सीख लिखी होती है। उनका सम्मान करना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारी पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी उस छांव की तरह होती है जहां थका हुआ मन सुकून पाता है। उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। बुजुर्गों के पास बीते वर्षों का अनुभव होता है, दिल में अपनों के लिए अथाह प्रेम। उन्हें सम्मान देना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ समय बिताना ही उनके प्रति सच्चा आदर है।
0: और एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार में समाज में वो आदरणीय है। उनके जीवन के अनुभव बताए गए सही मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक होता है। कोई भी समस्या जीवन में आती बुजुर्ग सहयोग से जल्दी निवारण होता है। घर परिवार में दादाजी, दादी जी, माँ, पिताजी, बड़े भाई, उनका आदर करना चाहिए। माँ पिताजी को भगवान से कम नहीं है, इसलिए मंदिर तीर्थ पर भगवान को ढूंढते हैं। वो बुजुर्ग रूप में हर घर में परिवार के पास है।
1: क्या बात है,
0: ये तो बिल्कुल सही कहा। हमारे माँ हमारे लिए भगवान समान होते हैं। देखिए, हर मुसीबत में जब सारी दुनिया हमें भूल जाती है या छोड़ देती है, या फिर जब किसी के पास कोई उपाय नहीं होता, माता पिता के पास जरूर एक उपाय होता है और वो हमें हर समस्या से बचा लेते हैं।
1: और है ना कि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारा बुरा कर सकता है, पर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहिए, वो भर भर के आशीर्वाद देते। एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की दुआएं उस दीपक की तरह होती है जो बिना शोर के जीवन की राहों को रोशन करती है। उनके साथ बिताया गया हर पल एक अनमोल उपहार है। और एक साथ ही लिखते हैं, वृद्ध जनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए परिवार और समाज दोनों को संवेदनशील बनना अति आवश्यक है। यदि वृद्ध जनों के प्रति किसी प्रकार का शोषण या उपेक्षा दिखाई दे तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और संबंधित यानी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण ही वृद्ध जनों को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन दे सकता है। और इस दिन को मनाने की शुरुआत 15 जून से की गई, ऐसी भी बातें हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजी है। और इसकी शुरुआत 2006 से शुरुआत की गई थी INPEA, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज द्वारा की गई थी और बाद में दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे आधिकारिक मान्यता दी थी।
0: सोनाली जी, आज के बच्चे जब दादा दादी और नाना नानी से कहानियां सुनते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि वे संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ते हैं। बुजुर्ग परिवार को जोड़ने वाली वो कड़ी होते हैं जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती है। आपने कभी नोटिस किया है, ये मैंने खुद भी जाना है कि जब भी किसी परिवार में बच्चे दादा दादी के आश्रय में बड़े हो रहे होते हैं तो उन पर एक अलग ही तरह के संस्कारों की पहुंचार होती है।
1: वो बच्चे अलग ही संस्कारी नजर आते हैं।
0: चूंकि माता पिता अपनी व्यस्तताओं के चलते उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन दादा दादी अपने समय का पूरा सदुपयोग उस बच्चे की परवरिश में करते हैं और वो बच्चा अलग ही जान पड़ता है।
1: तो सचमुच जिनके घर में दादा दादी, नाना नानी है, वो सचमुच वो बच्चे नसीब वाले होते हैं ना।
0: जी हाँ। और इसी के साथ हमारे एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग हमारे समाज की नींव और अनुभवों का समृद्ध दस्तावेज है। बुजुर्ग विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सभ्य समाज वही है जो अपने वृद्धों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और प्रेम पूर्ण जीवन दे सके। इसके अलावा सोनाली जी, कभी कभी ये भी लगता है, जब हम अभी अब चलन हो गया है कि सिर्फ पति पत्नी अकेले रह रहे हैं या फिर बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हैं, तब एक बात और जानने को मिलती है कि बुजुर्गों का जो सहयोग हमें मिलता है, घर में बच्चे कभी अकेले नहीं पड़ते, वो कभी अवसाद का सामना नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई ना कोई उन्हें देखने के लिए होता है कि नहीं।
1: आप क्या करें,
0: तो अब चूंकि हमें भी थोड़ा सा मनोरंजन बीच में चाहिए तो एक गाना सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं गीत।

0: कहाँ गुम है आप?
1: ठंडी हवा का इंतजार कर रही हूँ।
0: और ठंडी हवाओं के साथ बारिश की फुलवारी का भी
1: बहुत इंतजार है, क्योंकि जो है ना इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी हाँ। गर्मी बढ़ गई है कि हर कोई जाकर आसमान की तरफ देखता है कि काले बादल दिखे पर काले बादल नजर ही नहीं आ रहे,
0: नहीं आ रहे। और जो थोड़े बहुत बादल दिख भी जाते हैं वो यूं ही मुंह मोड़ के चले जाते हैं
1: और उनका रंग इतना सफेद सफेद है कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, काला रंग ज्यादा अच्छा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बारिश भी ना सोनाली जी प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो धरती को नया जीवन देती है। तपती गर्मी के बाद जब बादल उमड़ते हैं और पहली बूंद धरती को छूती है तो वातावरण में ताजगी और हरियाली फैल जाती है,
1: और वो जो खुशबू आती है नहीं,
0: हाँ हाँ हाँ, सौंधी सौंधी खुशबू,
1: उसके आगे महंगे महंगे जो इत्र है ना वो फीके लगते हैं।
0: वो तो है, लेकिन बारिश का आनंद तभी लिया जा सकता है सोनाली जी जब हम इसके आने से पहले उचित तैयारी कर लें। थोड़ी सी सावधानी हमें जल भराव, बीमारियों और अन्य परेशानियों से बचा सकती है। बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए।
1: कई
0: सारे हिंदू हैं जो हमें पहले जांच कर लेना चाहिए, बारिश आने से पहले तैयारियां कर लेनी चाहिए। इन तैयारियों के बारे में कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे।
1: अब जैसे तैयारियों की बात चलिए तो यस, वैसे तो हम सभी तैयारी करते हैं कि भाई कहीं दरारें पड़ गई है तो वो भर देते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है नेहा कि वर्षा जल संचयन का काम है ना, क्योंकि क्या होता है ना, हम ये जो बारिश का पानी है वो वैसे ही बह जाता है, तो अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि छत के ऊपर से ऐसा उतार करके और उसे नल के पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर भेजने की व्यवस्था हो तो जो पानी है ना हमारे जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर हैंडपंप वगैरह के माध्यम से वो पानी हमें मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे स्टोर करके भी रखते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था करना सबसे जरूरी बात है। तो वो हमें अगर आप कर सकते हैं तो ये व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि जो बूंद बूंद है ना इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि जो पानी है उसे हमें जमा करना है और छतों पर गिरने वाले पाइप को टंकी के माध्यम से भूमिगत जल संग्रह स्थान तक पहुंचाना है। इससे पानी की बचत तो होती है, साथ ही भूजल का स्तर भी बढ़ता है, तो इस व्यवस्था करने का काम हमें जरूर से करना आना चाहिए।
0: इसके अलावा बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए, छत दीवारें और खिड़कियों में कि कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। घर की नालियों, पाइप और पानी निकलने के रास्तों की भी सफाई कर लेनी चाहिए ताकि तेज बारिश में पानी जमा

0: हो जाए। कई बार ना जो ऐसे घर के पुराने पाइप होते हैं या जो उपयोग में कम होते हैं, तो देखिएगा बाकी दिनों में ना चिड़िया वहां घोंसला बना लेती है या फिर अपने तिनके तिनके जमा कर। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वहां पानी जम सकता है और घोंसले को भी नुकसान हो सकता है।
1: और बहुत सारे लोगों को ना बहुत लालच भी होता है ना कि अरे ये टायर जो है मुझे बाद में काम आएंगे, भले ही वो बिना काम के हो, तो उसमें पानी जमा हो जाता, फिर उसमें मच्छर पनपने लगते हैं, फिर डेंगू मलेरिया होने का
0: बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
1: इसलिए फिर वो जो है ना जो कबाड़ सामान जो घर में जमा करके रखा है, छत के ऊपर है जो बोतल्स वगैरह हैं, और बहुत सारा ऐसा सामान है, वो बिल्कुल कबाड़ में दे देना चाहिए। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि बारिश के दिनों में जल स्रोतों के दूषित होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इससे पेट के संक्रमण, पीलिया, टाइफाइड का खतरा बढ़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बारिश होने से पहले घर में वाटर फिल्टर का यानी आरओ सिस्टम की मरम्मत सर्विसिंग करवा लेना समझदारी का काम है। वाटर फिल्टर उपलब्ध ना हो तो पानी को अच्छी तरह उबालकर छानकर पीने की आदत डालना जरूरी है, और घर से बाहर निकलते वक्त अपनी बोतल लेकर जाए।
0: बिल्कुल, एक साथ ही लिख रहे हैं, बारिश तो भाई होनी होती है, तो आषाढ़, सावन, भादो और कार्तक अपने आप प्राकृत स्वरूप में भली भांति चतुर्दिक हो जाया करती है, और उनके पूर्व की तैयारियों में कृषक अपने ईंधन की व्यवस्था के तहत गोहरे और लकड़ियों को संभाल कर रख लिया करते थे, नहीं तो भादो मास में तो चूल्हा ही नहीं जल पाता था, तो फिर चना, चबेना और गंग जल का ही भरोसा रहता था, न कि और गर्मा गर्म पकौड़ों का। ये प्राकृत मानसून की बारिश का हाल था, नदियां उफान पर रहा करती थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती ही पानी न बरसने के कारण गर्म हो रही है और नदियों में प्रवाह नहीं हो रहा, तो फिर तैयारी किस बात की। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तैयारियां हैं जो हमें करनी ही होती है।
1: बिल्कुल करना जरूरी है। और आप क्या करना चाहिए, आप एक गाना सुनिए।
0: गीत सुनना भी बहुत जरूरी है,
1: सुनते हैं।

0: तो हम मेघा से कहेंगे कि भाई परदेश मत जाओ, हमारे देश में आ जाओ।
1: एक साथी ने लिखा है, बारिश की पूर्व तैयारी में हमें अपने अपने घरों, सरकारी भवनों आदि ऐसे स्थानों के चांदनी गैलरियों में जमा बारिश के पानी को पुनः जमीन में भेजने की व्यवस्था करने की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे पानी जमीन में जाकर पुनः हम पानी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सके। तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। लेकिन सोनाली जी, जब बरसात का मौसम आता है तो खाने पीने की भी बड़ी इच्छा होती है, कुछ अलग अलग मस्त मस्त चीजें।
0: यानी अभी गर्मी में ना तला भुना खाने का मन नहीं होता है ना, बस ठंडा ठंडा खाने का मन होता है। पर जब बारिश झमझमाती बारिश होती है ना, उस वक्त पूरी हो, आलू की सब्जी हो,
1: सोनाली जी अब तो आप और नाम मत लीजिए।
0: तो आज के हमारे जो उत्तर प्रदेश के हम प्रादेशिक व्यंजन में मक्खन मलाइयों और साथ में बेडमी पूरी और आलू की सब्जी, उसकी जो हमने व्यंजन का बोला था और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भी भेजे थे, तो मक्खन मलाइयों सर्दियों के मौसम में उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में मिलने वाली बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे दिल्ली में दौलत की चाट भी कहा जाता है। ये इतनी हल्की और मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। दूध का चयन, इसे बनाने के लिए फुल क्रीम दूध या ताजी मलाई का इस्तेमाल किया जाता है। ओस की रात में पारंपरिक रूप से दूध को उबालकर ठंडा किया जाता है और रात भर खुले आसमान के नीचे ओस में छोड़ दिया जाता है और इसे मथते हैं और सुबह तक इस दूध को बहुत देर तक मथा जाता है, जिसके ऊपर बादलों जैसा हल्का झाग या फोम बन जाता है। स्वाद और सजावट, इस झागदार मलाई को अलग करके इसमें चीनी, इलायची, केसर और कटे हुए बादाम, पिस्ता मिलाए जाते हैं और खाया जाता है। नेहा, आपने खाई है मिठाई?
1: नहीं, मैंने खाई भी नहीं थी और सुनी भी नहीं थी, लेकिन आज रेसिपी सुनने के बाद, विधि सुनने के बाद बिल्कुल समझ आ गया है और मुझे बिल्कुल वो दृश्य भी सामने आ गया कि कैसी दिखती होगी और कैसी लगती होगी।
0: और वो ना दोनों में जो खाते होंगे ना, तो बहुत ही मजा उसमें दुगना हो जाता होगा। और सचमुच मैंने पढ़ा है इस बारे में, फिर खाया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों के मौसम में हम बनारस जाएंगे और ये मक्खन मलाई खा के आएंगे, क्योंकि उसे ले नहीं जा सकते ना कहीं दूसरी जगह।
1: एक साथी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और पारंपरिक तरीकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से मक्खन मलैया और बेडमी पूड़ी आलू की सब्जी विशेष रूप से पसंद की जाती है। मक्खन मलैया लखनऊ, ये लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों का शीतकालीन स्पेशल स्ट्रीट फूड है, जिसे मीश या दौलत की चाट, जैसा कि हमने पहले भी कहा, के रूप में जाना जाता है। ये दूध की मलाई से बनी बेहद हल्की और झागदार रुई जैसी नरम मीठी डिश है। इसके अलावा इन्होंने बेडमी पूड़ी के बारे में भी लिखा है और आलू की सब्जी। आगरा, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है, जो विशेष रूप से आगरा और मथुरा की गलियों में प्रसिद्ध है। बेडमी पूड़ी ये उड़द दाल की स्टफिंग वाली खस्ता और कुरकुरी तली हुई है। आलू की सब्जी इसके साथ मसालेदार, रसेदार या डुबकी वाले आलू, यानी कि बिना प्याज लहसुन के परोसे जाते हैं। मुख्य सामग्री गेहूं का आटा, सूजी, भीगी हुई उड़द दाल, सौंफ, हींग और गरम मसाले। इस वीडियो में इसमें हलवाई जैसी खस्ता बेडमी पूड़ी और मसालेदार आलू की सब्जी बनाने की विधि, एकदम हलवाई जैसी फूली फूली खस्ता बेदमी पूरी मसालेदार आलू की सब्जी बनाई जाती है।
0: यानी उड़द की दाल डाली जाती है, जिससे वो पूरी जो ना हमेशा जो हम पूरी बनाते हैं वो थोड़ी नरम हो जाती है, पर ये जो बेडमी पूरी होती है ना वो कड़क रहती है,
1: जो खाने में भी मजा आता है।
0: और वो जो टमाटर डाल के वो आलू की सब्जी, तो उसका कुछ मजा ही कुछ और है। पर अब समय कह रहा है कि हमें इजाजत ले लेना चाहिए। तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार।

सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

Petara. पिटारा में आज सेहतनामा।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से, और आज का जो विषय रहेगा जीवन शैली और योग। दोस्तों, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीमती शारदा अग्रवाल, जिन्होंने योग प्रशिक्षण मुंबई के 100 वर्ष पुराने योग प्रशिक्षण संस्थान से लिया है, वो संस्थान देश की जानी मानी योग गुरु श्रीमती हंसाजी जयदेव के मार्गदर्शन में संचालित होता है। तो श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ होता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा, हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी, ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या? योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो, इसके लिए बताइए कि योग का योग दरअसल है क्या?
1: देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं, तो योग का अर्थ होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना, कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है तो उस परिस्थिति में हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है, वो भी योग के अंतर्गत आता है, उसे भी योग ही कहते हैं। आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
0: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। पर योग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
0: जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है, ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ संगीतमय वातावरण बनाना चाहेंगे। हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना

0: गाना शारदा जी वाकई आपने बहुत अच्छा सुन पाया। जो मधुबन खुशबू देता है यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है, दरअसल वही महान कहलाता है। और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है। तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती हैं योग का?
1: देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने हाथ पांव को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं। और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें। और उस समय भी देखिए योग ही आता है। अचानक बिस्तर से उठना झटके से वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए। किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है। तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
0: प्रतिकूल होता है,
1: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखना कि एक शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले, सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए। 2 ग्लास गर्म पानी आपने पिया, पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है।
0: कहते हैं लोग बेड टी चाहिए।
1: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने अपना जो रात का हमने डिनर लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं, 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप हो गया है,
0: फास्टिंग हो गया है।
1: तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आएं, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आएं, उसके

0: बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके दिन की शुरुआत होना चाहिए।
1: जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए। तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है, तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
0: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं, तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की, कोई सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है, पर आप जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए, शांत होना चाहिए आपको, शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
1: जी जी जी। तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे,
0: और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्योदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्योदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्योदय से ही शुरू हो जाती है, और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी दिन की चहचहाट आने लगती है, तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए। हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए, शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए, कुछ आसन वगैरह करके आइए, या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए, घर पर ही चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
1: अच्छा
0: जी,
1: देखिए आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में यकीन रखते हैं, वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है।
0: जी हाँ।
1: तो आप कितनी सहमत हैं इस बात से?
0: देखिए, कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही, इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना ही है जल्दी, क्योंकि आप रोग आपके शरीर में पकड़ लेंगे यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे। तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं,
1: जाग जाएं
0: हमारी सही मायनों में आप खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
1: ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीत में वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ।
0: जी, तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना चाहूंगी, बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था, आप सभी को ये गाना मुख पे था उस समय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द में

0: दोस्तों, गीत वाकई बहुत अच्छा था और प्रेरणादायी था कि किसी के लिए जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं, आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन, जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा, जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती, तो मन में लगा रहता कि आप क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर चार चार घंटे की होना चाहिए।
0: जैसे आपने प्रातः काल का तो बताया था,
1: मैंने बताया 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए, फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए, शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है जब आपका नाश्ता होना चाहिए, और फिर से 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारी
0: जनरेशन
1: है, जो हमारा काम करने का समय है, हर जगह पर अलग अलग है, तो हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें, और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में।
0: अच्छा।
1: फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का, मान लीजिए आपने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई है तो रात के खाने में दाल चावल खा लीजिए, या सब्जी रोटी दोपहर को खाई है तो अभी दाल चावल खा लीजिए, या खिचड़ी खा लीजिए, या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं, या गर्मी का टाइम है तो आप कड़ी चावल बना सकते हैं, या कर्ड राइस जिसको कहते हैं हम, उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने पर हमको ध्यान रखना चाहिए।
0: लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है?
1: दिन में हम खा सकते हैं क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है, पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा, फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना कोशिश तो जल्दी खाने की है, पर नहीं खा पा रहे हैं तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कड़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि आप लेट खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।
0: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घूंट खाया फिर पानी पी लिया, तो योग के माध्यम

0: से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
1: बहुत अच्छा सवाल किया राजन जी आपने। मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते हैं, पर उसका हमारे किडनी पर भी असर पड़ता है। बहुत ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर हमको हमेशा सिग्नल देता है कि हमको क्या चाहिए है। आपका शरीर आपको बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: तो जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए। पानी पीने का भी बहुत सरल नियम है, आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए। थोड़ा पानी आप पीजिए, फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के आधा घंटे बाद या हो सके तो एक घंटे बाद आप पानी पीजिए। उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जहां तक पानी की बात आई है तो मैं ये भी कहूंगी कि पानी जैसी कोई चीज हम खाने के साथ, जैसे आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा सुबह के नाश्ते में जैसे आपने नाश्ता लिया तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, वो एक पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप। दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं। और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं, इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं। पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
0: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लग रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घूट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो गलत बात है।
1: जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
0: ताकि बीच में पानी की आवश्यकता
1: ही ना हो। इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता।
0: और कहा यह भी जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो, तो आपकी क्या राय है?
1: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है। तो उसी प्रेम से आपको उस खाने को खाना चाहिए। खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया। और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए। यानी होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए, पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं।
0: बिल्कुल, वो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए भोजन के प्रति।
1: जी जी।
0: तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को।
1: इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी।

0: जी वाकई में गाना आपने अच्छा सुनवा दिया कि किसी और का सहारा बने, तो हमें अपना महत्व भी पता चलता है और इंसान होने का एक जो संकल्प करते हैं वो इंसानियत भी पूरी होती है। दरअसल हमारी बातचीत चल रही थी आहार पर और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं। दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं, आहार के बाद विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है। तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार कैसा होना चाहिए।
1: राजेंद्र जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम की शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं चार बिंदुओं से होके जाता है, आहार, विहार, आचार, विचार। ये चार योग के स्तंभ हैं
0: जी,
1: जिन पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जागरूकता की। मतलब इन चारों चीजों पर हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने खाने पे प्रश्न किए मुझसे, तो उस पे मैं यही कहूंगी कि हमारा हर चीज पे पूरे 24 घंटे हमको जागरूक होना बहुत जरूरी कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, अब इसके बाद आती है बात विहार की
0: जी।
1: विहार मतलब की रिक्रिएशन बोलते हैं या मनोरंजन कह सकते हैं या और भी इसे शिथिलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हट के कुछ रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से ये पूछा जाए कि आप क्या करते हैं तो वो बोलते हैं हम तो नहीं तो टीवी देखा। बिल्कुल टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ विहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना, आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं।
0: अच्छा,
1: तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करना, वो भी हमें बहुत रिलैक्स करता है। विहार में मैं बात करूंगी रिक्रिएशन की, शिथिलीकरण की, कि कैसे हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी केवल टीवी देखना ही मनोरंजन नहीं होता है कि आपने टीवी में कुछ देखा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल देखिए, सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विहार के अंतर्गत, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो हमारा एक शौक होना चाहिए। जिंदगी में हमारे एक शौक रखना बहुत जरूरी है। यदि हम शौक की बात करते हैं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं हाँ मुझे पहले ये चीजें अच्छी लगती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर सभी के पास ये रत्न, अभी तो समय नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता था। यदि आप घर पे भी महिलाओं से ये पूछो तो वो बोलते नहीं हम, पर देखिए यही समय है जब कई बार हमारे जो युवावस्था की चीजें जो हमें अच्छी लगती थी पर समय के साथ वो छूट जाती हैं, आप फिर से उसे शुरू कर सकते हैं। फिर से जो भी आपको, मान लीजिए आपको बागवानी पसंद है, आपको कोई चित्रकला पसंद है या आपको किसी भी प्रकार का शौक है,
0: म्यूजिक
1: का, किताब पढ़ना, कोई भी एक शौक होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो शौक बस हम बोलने के लिए है कि हाँ मुझे इस चीज का शौक है, वो हर रोज आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपके पास उसके लिए आधा घंटे का या जो भी जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं उसके लिए आप एक टाइम निकालिए और उसमें वो अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो हमारे इमोशंस को बहुत, हमारे इमोशंस को डाइवर्ट करने में बहुत मदद करता है। आप अपने काम के दौरान बहुत थक गए हैं या आप कुछ, हमारे लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार हम बहुत किसी बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं तो हम एक अवसाद की स्थिति में जाते रहते हैं। पर यदि आप, एक शौक है आपको और उस शौक में थोड़ी देर आप उस चीज को करते हैं तो वो आपके लिए बहुत मददगार, आपके लिए एक दवाई का काम करता है।
0: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी कि जैसे आपने कहा शौक होना चाहिए, यानी दोस्तों रचनात्मक आपका एक विहार होना चाहिए, रचनात्मक बातों की ओर आपकी जो हलचल होनी चाहिए वो अगर बंद पड़ गई हैं तो आप पास्ट में जाइए, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए और वर्तमान में लाइए। और शारदा जी हम चाहेंगे कि आचार पर अगर बात करें तो तीसरा बिंदु होता है

0: चार, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, आचार में तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा खुद के प्रति, हमारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हमारा खुद के लिए है। यहाँ पर कई बार जब हम ये बोलते हैं खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए समय निकालिए, तो कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत स्वार्थी हो गए कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, पर इसे आप स्वार्थी होना न समझिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी भी चीज का यदि ध्यान रखना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे हमारे आचार में ही आती है कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए खुद के लिए,
0: अनुशासित
1: टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम ये बोलते हैं जबकि हमें पास समय नहीं है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम कोई हमारे पास एक व्यवस्थित टाइम टेबल हम नहीं बनाते। तो ये बहुत जरूरी कि आप एक सबसे पहले एक दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, और उस टाइम टेबल में हर चीज के लिए समय निकालिए, उसमें अपने लिए भी समय रखिए और दूसरों के लिए भी समय रखिए। और साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पे भी इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के साथ देखिए, जब भी हमारे आपसी संबंध होते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं को दूर रख के वो संबंध बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ, दूसरे के साथ, किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं, तो हमारी कुछ अपेक्षाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं और हम चाहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये भी ये मेरे लिए करे। तो हमारा इस समय ये ध्यान होना चाहिए हमारे व्यवहार में कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना चाहिए।
0: जी जी जी।
1: और ये चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी। जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होकर कार्य होगा।
0: आपका
1: तो,
0: कहने का तात्पर्य ये है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति, तो उसमें अपेक्षा नहीं ही होगी और काम भी पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा। जी जी,
1: वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं।
0: तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं श्रोता कि भाई बातचीत के साथ साथ गीत कहा गया, तो उसी भाव को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आपकी पसंद का अगला गाना जरूर सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम अमृत है और गाना है जिंदगी।

0: एक लंगड़ा और एक भिखारी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते बहरे ने कहा,
1: अरे दोस्तों रुक जाओ जरा, मुझे चोरों के आने की आवाज सुनाई दे रही है।
0: तो अंधे ने कहा,
2: अरे मूर्ख तुझे आवाज सुनाई दे रही है, मुझे तो चोर दिखा।

0: मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।
2: तो दोस्तों, गीत कैसा लगा आपको? जिंदगी वाकई में एक लतीफा है, यानी हंसने हंसाने की बातें हैं, तभी तो जीवन शैली हमारी पूरी तरह से जागरूक बनेगी और तंदुरुस्त बनेगी। जीवन शैली और योग विषय पर हमारी चर्चा जारी है। आज के सेहतनामा कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल के साथ। शारदा जी, अब हम चाहेंगे कि आहार विहार आचार के पश्चात अब विचारों की बारी है, तो हमारे विचार और योग का तालमेल कैसे होना चाहिए?
3: देखिए, विचार तो हमारे हर पल हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं।
2: प्रति पल
3: विचार आते हैं, पर और यदि हम उन विचारों पर गौर करने लगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हर पल जो भी विचार आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। हर एक विचार के बारे में सोचना जरूरी नहीं है कि आप हर एक विचार को सोच रहे हैं, क्योंकि अधिकतर विचार हमारे उसमें नकारात्मक ही होते हैं। तो अनावश्यक, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी, अनावश्यक विचारों को त्यागना इसकी आदत हमको होनी चाहिए। उसे हर एक विचार का विश्लेषण करना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि आसन प्राणायाम बहुत महत्व करता है। यदि आप रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको बहुत मन में एक स्थिरता आती है और धीरे धीरे विचार जो है वो हमारे कम आने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित आसन और प्राणायाम करें। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह से लेके शाम, दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं, घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है, जो भी, तो आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए। ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
2: क्या क्या किया,
3: क्या क्या किया आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए, और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, क्योंकि हम उस पर गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है। पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक की अपनी दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा, पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए। अच्छा। कि रोज हमें कोशिश करना, शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले, पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक डायरी बनाने लगेंगे कि हर रोज लिखिए क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ।
2: अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फला फला ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा, तो ये विचार भी तो उसमें शामिल है।
3: नहीं नहीं, हमें उसको इग्नोर करने की आदत डालना है, वही तो योग है। यही अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें ये अवेयरनेस रखना है कि हमें सकारात्मक चीजों को सोचना है, हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूकता है। तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है, नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है, वही आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे।
2: वो टेक्निक जो आप बता रही थी, उसमें डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया।
3: जी हाँ, उसे हर रोज लिखते जाइए, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ जाएगी, आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि कोई भी चीजें आपको परेशान करेंगी ही नहीं,
2: विचलित नहीं करेंगी।
3: आप किस, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होता है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, या

0: कहीं गए, हमें वहां पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो हम कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं थी, किसी से मिलके या कोई भी चीजें हमको विचलित कर देती हैं। पर जब हम इस तरह की एक आदत अपने आप में डाल लेते हैं तो हमें ये सब चीजें विचलित नहीं करती हैं जल्दी से, क्योंकि आपने अपने विचारों को वो आदत डाल दी है।
1: ये बात सही है, और उन्हीं विचारों को जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, एक दिन वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाती है।
0: जी हाँ बिल्कुल, वही मैं भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाए, वो आपका स्वभाव बन जाएगा।
1: बिल्कुल, अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो हैं योग को जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको तो अपना लेते हैं किसी से सीख कर, कि भाई सुबह उठकर जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में ऐसे उठना है, ऐसे काम करना है, तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देखकर सुनकर ही सीख लेना चाहिए?
0: देखिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग किताबों में पढ़ के या टीवी में देखकर कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज जो आसन आपके लिए महत्व रखता है वो दूसरे के लिए भी रखता हो, क्यों, आपका शरीर अलग है, आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर की स्थिति कैसी है, इसलिए वो आसन आपके लिए भी करना ठीक होगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को के आगे तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे सीखिए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए।
1: हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा हो।
0: जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए सभी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें किसी का देखकर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा ये गलत है।
1: बिल्कुल, अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा।
0: तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से, स्फूर्ति से भर दे। उठ सबके कदम देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
1: तो बातों बातों में फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
0: उठ सबके कदम देखो रम पम पम, उठ सबके कदम देखो रम पम पम।

0: है पसंद प्यार के जहां में रजामंद जब हम
1: तुम बन गए हैं सनम बेधड़क मेरे घर आया करो कभी खुशी कभी गम

0: हंसो और हंसाया करो।
1: उठी सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तेरे रम पम पम।
2: शारदा जी गीत वाकई बहुत ही उल्लासित कर देने वाला, कदमों को थिरका देने वाला आपने सुनवाया, स्फूर्ति वाकई आ गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की कुछ ऐसी टिप्स जो सुबह उठने से लेकर, जैसे कई लोग ऑफिस में कार्यालय में काम करते हैं, थकान सी हो जाती है तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते, लेकिन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद या दो घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी रहे।
3: बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी, क्योंकि आज के समय में सभी ये लोग कहते हैं कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष हैं ऑफिस में हैं, तो आप वहाँ पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी हम जो योग की बात कर रहे हैं वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं, कोई हम साधु संन्यासियों वाले योगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थ योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस में है तो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है। आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखिए कि बहुत देर यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार बैठना या लगातार खड़े होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये आपको जागरूक होना, अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए। फिर आप यदि खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं, तो आप यदि वहां पर, हमारे लिए आसन करना सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो और खाने के बाद जैसे अब हम वहां पे तो हम नहीं आराम तो नहीं कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया शिथिलीकरण होना चाहिए, तो शिथिलीकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है, आप उसमें आंख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही हैं, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है या किसी वाहन की आवाज आ रही है या पंखे की आवाज आ रही है या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो बहुत ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको। आप उसमें ही रिलैक्स हो जाएंगे, आपके लिए वो 20 मिनट या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा।
2: फिर से अपना काम कर,
3: फिर से आप तरोताजा हो जाएंगे काम करने। आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की है, आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे।
2: क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है, और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा, काम करते करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा के ध्यान में करो,
3: वहीं पर आप थोड़ा सा पांव को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए, आंखों की आप एक्सरसाइज कर दे, थोड़ा सा आंख बंद करिए खोलिए, जल्दी जल्दी पलकें झपक लीजिए, आंखों को राइट लेफ्ट घुमा लीजिए, क्योंकि आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपकी आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं, और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं।
2: अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं ऑफिस में काम करते करते भी, कोई टिप्स मिल गया बिना

0: किसी सोच समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं तो वो कितना लाभदायक होता है।
1: मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए, किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा। तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए, आप पहले सीखिए, आप अपने आप का देखिए आपके लिए जरूरी है कि नहीं है। है तो आप एक हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप उसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे अपनाइए।
0: यहाँ पर एक गाना तो बनता है फिर।
1: अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना सुनाऊंगी। मेरा मन पसंद गाना है जिसके बोल है जो तुम

गीत वाकई आपने अपनी पसंद का बहुत अच्छा सुनवाया, लीक से हटकर था और थोड़ा मूड भी बदल गया। शारदा जी, हम अब अपने प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज का जो विषय है जीवन शैली और योग, चलते चलते संदेशात्मक रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत

0: के पास समय होता है उन दोनों ही के लिए कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए। आचार विचार तो आपने बता ही दिया है, और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए।
1: आपने जैसे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए। तो
0: सात्विक का मतलब शाकाहारी?
1: जी हाँ बिल्कुल, शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए।
0: वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा मन,
1: जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे।
0: जी जी जी।
1: और जैसे मैंने बताया कि, और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पे भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के आचार विचार आहार विहार पर, जो मैंने आपको चार स्तंभ बताए हैं, इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं, तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें अपने आप को, स्वयं को संतुलित और संतोष में स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने दिया है, और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने भाग लेकर हमारे सुनने वालों को लाभान्वित किया, और जीवन शैली और योग विषय पर कठिनतम बातों को आसान से शब्दों में समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की ओर से।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी, मैं भी आपका दोबारा से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, विविध भारती ने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया HR पाटले ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। शाम के 5 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी

0: विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो की मौसम स्थिति के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है। प्रधानमंत्री की स्टामर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं केदारनाथ फिल्म के इस गीत से अमित त्रिवेदी की आवाज में।

दोस्तों, अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में दिल फिल्म का गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
0: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटियां कला दुर्ग

0: से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
1: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है।
0: आदरणीय अजीत जी व बिमरेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
1: जी,
0: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे, लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
1: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है, आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
0: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
1: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
1: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
1: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
0: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
0: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
0: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
1: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर नौ बग्यारा हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे?

0: उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
1: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
1: कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहां थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई।
2: लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
2: मैंने कहा ना, जो चाहते हो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
2: क्या कंचा चाहिए?
1: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
1: नहीं।
2: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा। क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
1: आह, कितने सुंदर कंचे। ओह।
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
1: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला सुनो।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं।

0: रामन अगली बेंच पर है। वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
1: आ गया
2: जॉर्ज, दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना?
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
3: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी,
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
3: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
3: अप्पू,
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
3: अरे, तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
3: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
3: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी,
3: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
2: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
3: हाँ हाँ, बता, डरना मत।
2: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
3: हाँ हाँ,
0: वो कांपते हुए बोला,
2: वो कंचा।
3: कंचा?
0: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
3: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा।

0: रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, रामन, मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
1: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो, जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा, इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है,
1: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
0: तब शक हुआ,
1: कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा, जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो।
2: किसी को शक हो तो पूछ लो।
0: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
2: क्या किसी को कोई शक नहीं?
1: नहीं मास्टर जी।
0: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी, वो सोच रहा था,
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे।
2: अप्पू क्या सोच रहे हो?
1: वो मैं
2: पूछ लो ना, शंका क्या है?
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में?
2: क्या सोच रहे हो?
1: वो पैसे।
2: क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए, क्या रेलगाड़ी के लिए?
1: हाँ।
2: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
0: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
1: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
0: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
2: लाओ।
0: मास्टर जी ने कहा,
2: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
0: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
1: ओए,
0: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया, उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
1: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
0: वो बेंच से उतरा।
2: किधर?
0: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
1: फीस देनी है।
2: फीस मत देना,
0: मास्टर ने कहा। वो छिझकता रहा।
2: ऑन द बेंच।
0: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
2: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
1: ध्यान दूंगा।
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों, एक एक करके आओ।
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं,
5: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की

0: मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
1: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
2: क्या सब फीस जमा कर चुके?
3: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा, वो नहीं उठा।

0: शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे।
1: वो देखो,
0: वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
2: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
3: अच्छे कंचे हैं ना?
2: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
3: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
3: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
2: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
2: तो फिर?
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
3: दे दो।
2: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया।

0: उसकी मां शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर मां के गले लग गया।
1: मां,
2: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख मां घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
1: ये देखो मां।
2: अरे ये क्या है?
1: मैं नहीं बताऊंगा।
2: मुझसे नहीं कहेगा?
1: कहूंगा। मां, आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहां से लाया?
1: खरीदे हैं।
2: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
1: दोपहर को दिए थे ना।
0: मां ने दांतों तले उंगली दबाई।
2: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ मां को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
2: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
2: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया।
3: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। असी आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं, FM 107.2 MHz से। शाम के 6 बजन वाले ने लोहन सुनो हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र तो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने।

0: यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 MHz 'ਤੇ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: एक जरूरी सूचना सुनो, प्रसार भारती के अधीन आकाशवाणी चंडीगढ़ विच नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम तहत साल 2026-27 लई अप्रेंटिसशिप ट्रेनी वजों सिख्यार्थियों नूं रखण दा प्रबंध किया गया है। चाहवान उम्मीदवार जिन्हां कोल इंजीनियरिंग जां संबंधित विषय विच डिग्री होए इस सुनहरी मौके का लाभ लै सकते ने। सिख्यार्थियों नूं अप्रेंटिसशिप बोर्ड ऑफ इंडिया नवी दिल्ली के पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। योग सिख्यार्थियों नूं जुलाई 2026 तो सिखलाई का मौका दिता जाएगा। वधेरे जानकारी लई आकाशवाणी चंडीगढ़ नाल संपर्क करो। साडा टेलीफोन नंबर है 0172260-6125। सूचना समाप्त हुई।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਕਰੋਸ਼ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਅਨੁਪਮ ਅਮੋਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਐਫਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 6:10 ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 6:20 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हुई, हरियाणा को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक अग्निकांड में जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिवार को 10-10 लाख रुपये की राहत राशि देने की घोषणा की। अन्य दुकानदारों को भी राहत राशि मिलेगी। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा, अमेरिका ईरान में युद्ध समाप्ति समझौते से भारत को काफी फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा, वैश्विक स्थिति के चलते भारत में अन्य देशों के मुकाबले ईंधन और दवाओं आदि के दामों में कम वृद्धि हुई है। और हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर यात्री सुविधा दिवस मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। यह देश के विमानन क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा,

0: कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। ये हवाई अड्डा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों का संचालन करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि जेवर हवाई अड्डे से फरीदाबाद, वल्लभगढ़ और पलवल क्षेत्र के लोगों को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक अग्निकांड में जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिवार को 10-10 लाख रुपए, पूर्ण रूप से बर्बाद दुकानों के मालिकों को 5-5 लाख रुपए, अन्य दुकानदारों को 2-2 लाख रुपए और जली रेहड़ी के मालिकों को 50-50 हजार रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की है। ये राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज अग्निकांड में तबाह हुई दुकानों का निरीक्षण करने के उपरांत प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात के दौरान ये घोषणा की। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा,
1: मैंने उसी दिन जिस दिन ये आगजनी हुई थी कहा था कि जिनकी आगजनी के अंदर मृत्यु हुई है उन परिवारों को 10-10 लाख रुपया हम देंगे। इसमें अमन कुमार, सनौ श्री जगदीश और रोहित खुराना है और कपिल कुमार है। जो नुकसान यहाँ हुआ है सरकार कुछ सहयोग उसमें कर सकती है, परंतु जान की भरपाई नहीं हो सकती। थोड़ा समय जरूर लगेगा, परंतु हमारा पूरा सहयोग इनके साथ है। और इसके बाद जो ULB विभाग है वो भी इसका आंकलन कर रहा है और उस आंकलन के बाद जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का काम सरकार करेगी।
0: शहरी स्थानीय निकाय के रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित दुकानदारों को अलग से मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अग्निकांड में मारे गए कपिल, सौरभ व अमन के घर भी गए और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अमेरिका ईरान में युद्ध समाप्ति समझौते से भारत को काफी फायदा होगा, क्योंकि भारत का 25-30% पेट्रोलियम हॉर्मूज जल डमरू मध्य के रास्ते ही आता है और युद्ध की वजह से पोतों की आवाजाही प्रभावित थी। श्री विज आज अंबाला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हरियाणा में आज से विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया शुरू होने के प्रश्न पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि SIR चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है।
2: देखिए SIR चुनावी प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग, पिछले कई साल से हुआ नहीं था। जो लोग बदल के चले गए, जिनकी 2002 के बाद मृत्यु हो गई उनके नाम नहीं कटे, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया जाता है कि गलतियां मलतियां करके अपने नाम से जुड़वा ली, जबकि वो मतदाता है नहीं। चुनाव आयोग का ये संवैधानिक अधिकार है, हम तो स्वागत करते हैं और हर नागरिक को इसमें सहयोग करना चाहिए। BLO हालांकि जाएंगे घर घर, लेकिन ठीक ठीक जानकारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि ठीक।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा कि अमेरिका ईरान युद्ध की स्थिति ईंधन और दवाओं के दाम में बढ़ोतरी का सामान भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कर रहा है। भारत में विकसित देशों के मुकाबले दाम में काफी कम वृद्धि हुई है। वे आज कैथल में भाजपा के जिला स्तरीय सम्मान समारोह में मीडिया से बातचीत कर रही थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाल के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि सुरजेवाला मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय केवल बातें करते हैं और महंगाई पर कोरे बयान देते हैं। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए नए कार्यकर्ताओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के विरोध पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा कि आयोग मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम कर रहा है।
3: आज हम वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का काम कर रहे हैं और जितने हमारे घुसपैठ हुए दूसरे देशों से, स्पेशली बांग्लादेश से आके भारत के लोगों के जो अधिकारों के ऊपर डाका डाल रहे हैं, अगर उनको डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का काम कर रहे हैं तो विपक्षियों को क्यों तकलीफ हो रही है। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखो तो किस तरीके से लाखों लोग वहाँ पर बंगाल से आकर हमारे जो पश्चिम बंगाल के भारतीय हैं उनके अधिकारों पर डाका डालने का काम कर रहे हैं।
0: इससे पहले भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी, पानीपत प्रभारी अशोक गुर्जर, पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा व कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज जींद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक से पहले खेल मंत्री ने जिला ग्रामीण विकास कार्यालय के प्रांगण में एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। मीडिया से रूबरू होते हुए श्री गौरव गौतम ने बताया कि आज की बैठक में कुल 11 मामले रखे गए, जिनमें से 9 मामलों का मौके पर ही स्थायी समाधान कर दिया गया। शेष 2 मामलों को अगली बैठक तक

0: के लिए लंबित रखा गया है और संबंधित उच्च अधिकारियों को इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिले के एक पुस्तकालय का नाम बदलकर अटल पुस्तकालय किए जाने के मामले पर उन्होंने कहा,
1: दोनों हमारे महापुरुष हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। महापुरुषों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। महापुरुष देश की धरोहर होते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को महापुरुषों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
0: केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग के सहयोग से हिसार जिले के गांव मुकलान के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 7 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को पुष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत लगाए गए इस राष्ट्रीय शिविर की समाप्ति पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें युवक युवतियों ने पारंपरिक पोशाक पहनकर नृत्य किया। शिविर के संयोजक नरेंद्र दुहन ने बताया कि शिविर में विभिन्न राज्यों से 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
2: इस शिविर में 7 राज्यों से 200 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें मध्य प्रदेश से 9 बच्चे और

0: योजना के तहत लगाए गए इस राष्ट्रीय शिविर की समाप्ति पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें युवक युवतियों ने पारंपरिक पोशाक पहनकर नृत्य किया। शिविर के संयोजक नरेंद्र दुहन ने बताया कि शिविर में विभिन्न राज्यों से 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
1: इस शिविर में 7 राज्यों से 200 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें मध्य प्रदेश से 9 बच्चे और छत्तीसगढ़ से 9 बच्चे, उत्तराखंड से 9 बच्चे, पंजाब से 9 बच्चे, हिमाचल प्रदेश से 9 बच्चे और 100 बच्चे हरियाणा के थे और 100 बच्चे अलग अलग राज्यों से थे। सभी बच्चों ने गांव में जाकर के महिलाओं से बात की, हमारे कल्चर को जाना, हमारे पशुओं को देखा, लोगों से मिले, बातचीत की, हमारे जो रिचुअल्स हैं उनके ऊपर चर्चा की। इस शिविर का जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों का व्यक्तित्व विकास और अनेकता में एकता।
0: शिविर में भाग लेने पहुंची छात्राओं ने कहा कि उन्हें अलग अलग राज्यों की संस्कृति, बोली, भाषा, खानपान व पहनावे आदि के बारे में जानने व समझने का अवसर मिला।
2: मेरा नाम जानवी और मैं मोगा पंजाब से आई हूँ। यहाँ NIC ने हमें एक मौका दिया और मिलजुल के काम करने के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी जैसे स्टेट से हम मिले और हमें कल्चर, खानपान और ये सब जानने को मिला।
0: हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर आज यात्री सुविधा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिसार हवाई अड्डे के निदेशक OP सैनी ने बताया,
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर एयरपोर्ट पर विभिन्न गतिविधियां की जा रही है। सबसे पहले हमने इसमें वंदे मातरम गीत का सामूहिक गान किया, उसके पश्चात हमने इस एयरपोर्ट पे काम करने वाले हाउसकीपिंग स्टाफ को हमने सम्मानित किया, उसके पश्चात हमने हिसार एयरपोर्ट पे कार्यरत जितने भी वुमेन्स है, महिला जो हमारी कर्मचारी है जो एविएशन सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, उनका सम्मान किया। हमने यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया।
0: श्री सैनी ने कहा कि आज हवाई अड्डे पर यात्रियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया तथा उन्हें स्वागती किट भी प्रदान की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हुई, हरियाणा को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक अग्निकांड में जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिवार को 10-10 लाख रुपये की राहत राशि देने की घोषणा की। अन्य दुकानदारों को भी राहत राशि मिलेगी। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा, अमेरिका ईरान में युद्ध समाप्ति समझौते से भारत को काफी फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा, वैश्विक स्थिति के चलते भारत में अन्य देशों के मुकाबले ईंधन और दवाओं आदि के दामों में कम वृद्धि हुई है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
4: मेरा छोटा भरा है ना, बहुत शरारती है। कॉलेज विच मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा ने दिखाता सी। कल तो लाइट दे बिल ते जीरो अमाउंट देखी। मैं सोचा इसका पक्का फोटोशॉप कितना होगा, नहीं तो जीरो बिजली बिल किवे पॉसिबल है। पूछा तो अक्ल लगा, वीर जी सब ऊपर वाले दी मेहर है, सोलर पैनल है ना। मैं क्या, ओहे ठीक है पुत्र। PM सूर्य कार मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in। हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। केंद्र वालों उत्तरी रेलवे के अंबाला डिवीजन लिए 201 करोड़ रुपए के कवच प्रोजेक्ट की मंजूरी। पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में जोड़न वाले प्रमुख रेल लांघे में होगा फायदा। पंजाब च विशेष तीबर सोध 2026 तहत घर घर गणना 25 जून तो। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी SIR के हिस्से वजो गणना का गेड अज तो शुरू होया। राष्ट्र मनुखी अधिकार कमिशन ने रूपनगर जिले च आवारा कुत्तियां दे हमले कारण 8 साला बच्ची की मौत होने के मामले का अपने पद्धर से नोटिस लिया। आयुष मंत्रालय वालों 12वें कौमांतरी योग दिवस के रस्मी समागमों की शुरुआत और जलंधर च पठानकोट सड़क से अज सवेरे हुए एक सड़क हादसे में मां धी समेत एक परिवार के 2 मैंबर की मौत, दूजी धी गंभीर जख्मी। ते हुण खबरां विस्थार नाल। ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਵਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਵਚ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

0: रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि यह प्रणाली 811 किलोमीटर मार्ग से स्थापित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में अंबाला डिवीजन के अंबाला छावनी, लुधियाना, कालका, चंडीगढ़, न्यू मरिंडा, सानीवाल, सरहंद, दौलतपुर चौक, राजपुरा, बठिंडा, श्रीगंगानगर और लुधियाना तूरी जाखल हिस्से शामिल ने। यह मार्ग पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सूबे को जोड़ने वाले प्रमुख रेल लाइन है। विशेष टिबर सोध एसआईआर 2026 तहत सूबे भर में घर घर गन्ना 25 जून तो 24 जुलाई तक होगी, जिस विच बूथ लैवल अफसर बीएलओज वोटर के वेरवियां की पुष्टि करने गन्ना फार्म एकत्र करने घर घर जाएंगे। पंजाब के मुख्य चुनाव कमिश्नर अनंता मित्रा ने सूबा पदरी तैयारियों का जायजा लेंदे अज चुनाव कमिश्न के सीनियर डिप्टी चुनाव कमिश्नर भानु प्रकाश हितू की प्रधानगी हेठ एक समीक्षा मीटिंग की। यह मीटिंग मोहाली, फतेहगढ़ साहब, पटियाला, रोपड़ और एसपीएस नगर के जिला चुनाव अधिकारियों की गई। श्रीमती मित्रा ने सीनियर डिप्टी चुनाव कमिश्नर सूबे के चुनाव तंत्र बारे जानकारी उन्होंने दसिया कि इस 5 डिवीजन के जिले 117 हल्के शामिल ने, जिन्होंने कुल 14,664 स्थानों से 24,453 पोलिंग स्टेशन ने। उन्होंने कहा कि सूबे कुल 85.8% वोटिंग मैपिंग मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि चुनाव अधिकारियों, चुनाव तहसीलदारों और तकनीकी अमले वास्ते करवाया गया 3 रोजा सूबा पदरी सिखलाई प्रोग्राम सफलतापूर्वक मुकम्मल हो गया, जबकि बीएलओज और बीएलओ सुपरवाइजर ने जिला पदरी सिखलाई प्रगति अधीन है। चुनाव समग्री की छपाई का काम जारी है, घर घर जाके तस्दीक करने संबंधी गेट तो पहला इस मुकम्मल कर लिया जाएगा। डिप्टी चुनाव कमिश्नर ने सारे वोटर सूचियों की सटीकता, संपूर्णता, पारदर्शिता में यकीनी बनाने की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने हरेक जिले की फील्ड मशीनरी तैयारियां और लागूकरण प्रोटोकॉल की समीक्षा की। डिप्टी चुनाव कमिश्नर पंजाब के 3 रोजा दौरे दौरान अगले 2 दिनों च होरना जिले भी कवर करेंगे। उधर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में वोटर सूचियों के विशेष तीबर सोध के हिस्से वजों गणना गेड़ अज तो शुरू हो गया और 14 जुलाई तक जारी रहेगा। जागरूकता पैदा करने और सोध प्रक्रिया च वध तो वध जनतक भागीदारी उत्साहित करने लिए शहर भर में वोटर जागरूकता गतिविधियां करवाई जा रही हैं। अज 200 तो वध आंगनवाड़ी वर्करां और सिविल डिफेंस वलंटियर्स की भागीदारी सुखना झील से एक वाकाथॉन करवाई गई। भागीदारों ने एसआईआर चंडीगढ़ है तैयार का नारा लगाया। वलंटियर्स ने लोगों नाल गलबात करके एसआईआर प्रोग्राम बारे जानकारी दी। सारे योग नागरिकों ने विशेष तीबर सोध प्रक्रिया च सरगर्मी नाल हिस्सा लैण ते एक पारदर्शी, समावेशी और मजबूत लोकतंत्री प्रणाली नूं मजबूत करने च योगदान पाउण दी अपील कीती गई है। राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमिशन ने रूपनगर जिले में आवारा कुत्तियां के हमले तो बाद 8 साल बच्ची की मौत होने की घटना का अपने पद्धर से नोटिस लिया। जिक्रयोग है कि अपने घर के बाहर खेलदियां बच्ची के आवारा कुत्तियां ने हमला कर दिया। स्थानक लोगों ने उसनू बचाया और चंडीगढ़ के पीजीआई हस्पताल ले गए, पर रस्ते में उसकी मौत हो गई। मामले में गंभीरता में लेंदे हुए राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमिशन ने पंजाब के मुख्य सकत्र ने नोटिस जारी करके 2 हफ्ते के अंदर इस मामले की वेरवे समेत रिपोर्ट मांगी है। यह खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @EIR RNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-EIR जलंधर। यूट्यूब से साडा चैनल है @EIR जलंधर। आयुष मंत्रालय ने अज नई दिल्ली च 12वां कौमांतरी योग दिवस के शानदार जश्न लई रस्मी समागम की शुरुआत की है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने अज नई दिल्ली च पत्रकारों नूं दस्सिया कि मुख्य समागम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई च कोलकाता के रेड रोड से होगा। उन्होंने दस्सिया कि इस मौके 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: भारतीय फौज के वजर कौर ने देशवासियों को फिरोजपुर के गुरुद्वारा सारागढ़ी साहब, हुसैनीवाला यादगार से फिरोजपुर किले दी जंगी दीवारा तरन तारण के खेमकलम कस्बे आसल उतार के दर्शन करने की अपील की है, जो कि पाकिस्तानी टैंकों के कब्रिस्तान वजों मशहूर ने। साडे पत्रकार ने दसिया कि पंजाब के रखवालिया वजों जानी जाती वजर कौर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इन्हों थावान शौर्य धरोहर यानी बहादरी की विरासत करार दिता है और लोगों पंजाब के माण की सरहद देखने की सदा दिता है। इन्होंने सारिया थावान का इतिहासक महत्व है, जो 1965 की भारत पाकिस्तान जंग च भारतीय जवानों की बहादरी, 1897 च सारागढ़ी ब्रिटिश भारत सिख सैनिकों और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव समेत भारतीय आजादी घुलाटियों की शहादत का वर्णन करदियां ने। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज संघ लोक सेवा कमिशन UPSC परीक्षा 2025 पास करने वाले उम्मीदवारों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सफलता पंजाब की

जैसी कई पहल उनकी आय की सुरक्षा के साथ साथ खेती को अधिक सशक्त बना रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई पहल की है। इनमें से एक महत्वपूर्ण कदम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का शुभारंभ है, जो देश की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में मिलते हैं। अब तक लगभग 9 करोड़ 50 लाख किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। किसानों की आय को कई स्रोतों से बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राष्ट्रीय पशुधन मिशन जैसी योजनाएं भी शुरू की गई। 2014-15 से लेकर इस साल मार्च तक लगभग 26 करोड़ मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। फसल बीमा योजना के तहत लगभग 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों में मदद मिली है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 3,000 रुपए की मासिक सुनिश्चित पेंशन दी जा रही है। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसानों के लिए जीवन रेखा बन गया है, क्योंकि सरकार ने इसे उत्पादन लागत के 1.5 गुना पर निर्धारित किया है। सरकार के नीतिगत समर्थन के कारण कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 में 26 करोड़ 50 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 35 करोड़ 80 लाख टन हो गया है। भारत 15 करोड़ 40 लाख टन से अधिक के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। पीएम कुसुम योजना से जहां खेती के लिए उन्हें सौर ऊर्जा सुलभ हुई है, वहीं इससे खेती पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। खेती सहित अन्य जरूरतों के लिए कम ब्याज पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराने में किसान क्रेडिट कार्ड किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के बहुत काम आ रहा है। उनकी फसलों को उचित मूल्य दिलाने के लिए बीज से बाजार तक की पहल भी बहुत कारगर साबित हो रही है। 2014 से 2025 के बीच जलवायु के अनुकूल फसलों की लगभग 3,000 किस्में जारी की गई हैं। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 84,200 करोड़ रुपए से अधिक मंजूर किए गए, जिससे 1.33 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। हरियाणा ने शुरू से केंद्र सरकार की योजनाओं के कदम ताल करते हुए देश के अन्य राज्यों के सामने एक नज़ीर पेश की है। केंद्र की किसी भी योजना को लागू करने में हरियाणा ने हमेशा ही अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू होने के बाद हरियाणा में अब तक 1,17,00,000 किसानों ने इसका लाभ उठाया है, जिन्हें 9,099 करोड़ रुपए से अधिक की बड़ी सहायता प्राप्त हुई है। खरीफ सीजन 2025 में 1,67,460 किसानों को 711 करोड़ रुपए का फसल नुकसान मुआवजा दिया गया। मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करने और उसके अनुसार सही उर्वरकों का प्रयोग करने को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है। इस पहल के तहत राज्य में अब तक 70 लाख मिट्टी के नमूने एकत्रित किए जा चुके हैं। 55 लाख नमूनों का विश्लेषण कर किसानों को मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। अब तक 86 लाख से अधिक मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। हरियाणा में 17 स्थायी मिट्टी और जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। हरियाणा सरकार ने पीएम कुसुम योजना को भी प्रमुखता से लागू किया है। 1,80,582 किसानों को इसका लाभ मिला है। इस योजना का लाभ देने में राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा चौथे नंबर पर है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश इस मामले में हरियाणा से पीछे है। फसल अवशेष प्रबंधन योजना 5,54,405 किसानों को 461 करोड़ 75 लाख की राशि जारी की गई है। 9,885 किसानों को 85 करोड़ 10 लाख की मशीन खरीद पर सब्सिडी दी गई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत प्रदेश के 11 करोड़ 71 लाख किसान अपना पंजीकरण करवा चुके हैं, जो MSP फसल खरीद फसल बीमा योजना तथा अन्य कृषि योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हरियाणा में अब तक केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में 16 लाख से अधिक किसान आ चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत हरियाणा के करीब 4 लाख किसानों का पंजीकरण हुआ है। ये योजना छोटे व सीमांत किसानों के लिए है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां किसानों को 24 फसलों पर MSP मिलता है।

0: हरियाणा सरकार ने मंडी भाव नहीं मिलने पर किसानों की चिंता को दूर करते हुए 14 सब्जियों, 5 फलों तथा 2 मसालों समेत 21 उत्पादों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया है, जिससे किसानों को जोखिम की पूर्ति की जाती है। हरियाणा समेत समूचे देश में एक दौर वो भी था जब किसानों को मिलने वाला मुआवजा राशि के 2 या 3 रुपए के चेक भी वायरल हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और डिजिटल सुविधाओं ने किसान को ग्रामीण उद्यमी के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।
1: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੀਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ।

0: साथी से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला। हमारे सभी फौजी साथियों और सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं।
1: पगड़ी

0: किशोर कुमार को आपने सुना फिल्म कटी पतंग में। अरुण बख्शी के बोल थे, संगीत था राहुल देव बर्मन का। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला।
1: ओ हो

0: की मेहंदी सुनकर युद्धा किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
2: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
3: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
2: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
3: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
2: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
3: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

महेंद्र कपूर की आवाज में ये रात फिर आएगी। ये फिल्म का गीत था SH बिहारी के बोलों को सुर में ढाला उपनयन ने। सूरज फिल्म का ये गीत है, मोहम्मद रफी का गाया है, सुन जयपुरी के मूल हैं शंकर जयकिशन की तर्ज।

एक मुसाफिर एक हसीना सुनने आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में एसएच बिहारी के बोलों को सुनने ढाला ओपी देयर में जयमाला कार्यक्रम की यही थी श्रोताओ आखिरी पेशकश। आज का जयमाला कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: खोलते मैं टाणी कोई ना खिल भी जावांगे बस तू अरदासा करया कर आपा मिल भी जावांगे आपा मिल भी जावांगे।
1: हुण तुसीं सुणिया गुरमान मान नूं प्रोग्राम दा अगला गीत कौरबी दी आवाज़ विच।

आज के हवा महल में हम आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार वाल्टर की लिखी झलकी नीम हकीम। निर्देशक हैं गोपाल सक्सेना। तो आइए सुनिए झलकी नीम हकीम।

0: ये दर्द तो मेरी जान लेकर ही रहेगा।
1: ये दर्द ना हुआ आफत हो गई। मैं पूछती हूँ जी, ये हाय हाय करके सारा घर को से पर उठा रखा है। कसम से कहती हूँ, इस दांत को निकलवा क्यों नहीं देते?
0: क्या मतलब?
1: नो, अब इन्हें मतलब समझाओ। देखो जी, तुम्हारी जगह अगर मेरे दांत में दर्द होता तो कब का निकाल देती।
0: ठीक कहती हो भगवान, मैं भी यही कहता हूँ।
1: क्या कहती हूँ?
0: यही कि मेरी जगह अगर तुम्हारे दांत में दर्द होता तो मैं भी कब का निकलवा देता।
1: तो मेरा दांत तो तुम निकलवाने को तैयार हो और अपना दांत ये दर्द कर रहा है, क्यों नहीं निकलवा देते? हाय हाय करके मेरे सर में दर्द कर दिया।
0: मेरी तो हिम्मत होती नहीं। हे भगवान, उसे देखा था सुगत को, जब उसने अपना दांत निकलवाया था उसका मुंह कैसा टूट गया था।
1: वो तो ठीक है, लेकिन तुमने ये जो हाय दर्द कहकर और चिल्ला चिल्ला कर मेरी बेइज्जती करवा रखी है, उसका क्या करूं?
0: क्या मतलब? यानी कि मेरी हाय हाय करने से तुम्हारी बेइज्जती हो रही है देवी की?
1: उसने जाने क्या सोचती होगी, पता नहीं मैं तुम्हें क्या क्या कह सुन रही हूँ, ये तुम चिल्ला रहे हो।
0: ठीक है, लेकिन मेरा दांत।
1: मैं जब छोटी थी तो मेरा भी एक बार दांत दर्द हुआ था। उस वक्त मेरी नानी जी ने मेरे दांत के नीचे देसी घी का गर्म हुई का फोया रखा था।
0: फोया?
1: हाँ जी, रुई को गर्म देसी घी में भिगो कर दांत के नीचे रखा। कसम से कहती हूँ, मेरे दांत का दर्द एकदम ठीक हो गया था।
0: तो वही लाओ ना भगवान, मेरी तो दर्द पहचान निकली जा रही है।
1: वही तो लाई हूँ, लो ये कटोरी में गर्म।

0: ये और ये रुई का फोया लो ये मुंह में रखो बोलो मुंह ये लो
1: मजा मजा मजा
0: क्या हुआ भगवान किसी पता नहीं क्या मुंह बता दे क्या बात है घी क्या ज्यादा गर्म था
1: गर्म ओहो दांत के साथ सारा मुंह भी जल गया दांत
0: भगवान ने
1: उसे कुछ भी नहीं खाया खाली दूध पीकर गुजारा कर रहा था अब तो दूध भी कैसे पिया जाएगा
0: किसने कहा था कि जल्दी से मुंह खोल दो घी गर्म था तो थोड़ी देर ठहर जाते
1: तुमने नहीं कहा था कि मुंह खोलो
0: सुनो जी एक बार और मेरे दांत में दर्द हुआ था
1: अच्छा फिर
0: कसम से कहती हूँ मेरी दादी जी घर पर आई हुई थी बस उन्होंने फिटकरी जलाकर और गर्म पानी में घोलकर मुझे जो कुल्ले कराए और बस
1: फिर
0: मेरे दांत का दर्द फौरन गायब
1: तो क्या फिर अब मुझे भी कुल्ले करवाओगी
0: हाँ जी मैंने फिटकरी जलाकर रखी है और पानी गर्म होने के लिए चढ़ा रखा है अभी लाती
2: हूँ आती हूँ कांता बहन आओ बहन क्या बात है शांति बहन क्या भाई साहब की तबीयत कुछ खराब है
0: हाँ बहन क्या बताऊँ इनके आज सुबह से दांत में बहुत दर्द है कसम से कहती हूँ मेरे लिए नाक में दम आ गया है
3: क्या दांत में दर्द बहन मेरी माने तो लौंग का तेल लगाओ हमारी उनके भी एक बार दांत में दर्द हुआ था
0: हाँ।
3: मैंने लौंग का तेल लगाया फौरन ठीक हो गया
0: अच्छा लौंग का तेल मगर वो मिलेगा कहाँ
3: मैं देखती हूँ घर में सब बचा हुआ पड़ा हो
0: बड़ी मेहरबानी होगी बहन
3: मेहरबानी की क्या बात है बहन अरे आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है मैं अभी लाती हूँ
0: ठीक है
2: मैंने कहा जी लो ये गर्म पानी में फिटकरी घुली रखी है
0: लो कुल्ले कर लो
1: पानी पानी गर्म तो नहीं है
0: देख लो ना
1: ठीक है मेरा तो मुंह न जाने कैसा कैसा हो गया
0: अच्छा मुंह तो जैसा है वैसा ही रहेगा मैं कहती हूँ कुल्ले करो
1: अच्छा ठीक है
3: लो शांति बहन बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी मिली है मैं रुई पर ही लगा लाई हूँ अब ये रुई तुम मुंह में रख दो ठीक हो जाएंगे मैं जाती हूँ
2: सारा काम पड़ा है जाके बर्तन भी धोने हैं कपड़े भी साफ करने हैं सुनो जी
0: एक जरा ये रुई मुंह में रख लो ये मुंह खोलो
1: मगर ये फिटकरी का पानी
0: ये बाद में कर लेना तुम मुंह तो खोलो
1: लो ये क्या कर रही हो क्या कर रही हो
0: अरे अब क्या है
1: तुम भाई साहब रखी है
0: ओहो, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया
1: तू बताता कैसे देवी जी तुमने रोहित से तो सारा मुंह बंद कर दिया था खैर मैं खुद ही रख लेता हूँ ऐसे
0: और क्या हो गया
1: मेरी तो जान ही निकल गई ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तेजाब
0: ओहो मेरी मानो तो डॉक्टर के पास चलो
1: डॉक्टर के पास
0: इस मुंह में दांत को निकलवाना ही होगा
1: मगर
0: अगर मैंने कुछ नहीं किया चलो डॉक्टर के पास
1: चलो आए मैं मरा आए आए आए मर गया रे
0: डॉक्टर साहब
4: नमस्ते हाँ तो कौन से दांत का तकलीफ है
0: देखिए डॉक्टर साहब ना मैं सुई लगवाऊंगी और ना सुन करवाऊंगी बस हम बहुत जल्दी में हैं जल्दी से आप दांत निकाल दीजिए
4: कमाल है आप तो बहुत बहुत हिम्मती लगती हैं कौन सा दांत है
0: चलो जी आगे बढ़कर अपना दांत दिखा दो
4: क्या आप ये आइए आप इसको
1: मगर डॉक्टर साहब दांत निकलवाने में ज्यादा दर्द तो नहीं होगा
4: बिल्कुल नहीं आपको पता भी नहीं चलेगा मैं
5: यस डॉक्टर
4: जरा मेरे आवाज तो देना
5: ओके डॉक्टर
0: ये डॉक्टर
1: क्या डॉक्टर साहब आप इससे मेरे दांत निकालोगे
4: हाँ हाँ क्यों
1: मर जाऊंगा डॉक्टर साहब मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा
4: लगता है आप बहुत डर रहे हैं
1: मेरे तो सर घूम रहा
0: है कोई बात नहीं
1: थोड़े थोड़े हो जाए डरा भी लग रहे हैं
0: कोई बात
1: ये डॉक्टर इनसे ही मेरा दांत निकालेगा
0: अजी मैं कहती हूँ तकलीफ भी तो दूर हो जाएगी आज सुबह से तुमने सारा घर सर पर उठा रखा है
4: हाँ तो आप तैयार हैं दांत निकलवाने के लिए
1: क्या मतलब मैं देखता हूँ कौन मेरे दांत को हाथ लगाता है
4: ये क्या कहते हैं
0: अजी मैं कहती हूँ दांत नहीं निकलवाना क्या
1: नहीं बिल्कुल नहीं
4: ये बैठे बिठाए क्या हुआ ए हजरत दांत निकलवा लो
1: बस खबर दांत से दांत का नाम भी लिया तो
0: अरे तुम्हें क्या हो गया है दर्द तो दूर हो जाएगा अब दांत निकलवाओ
1: हर किस नहीं मेरे दांत के पास आने की जरूरत भी की तो चलो घर फौरन घर चलो मेरा दांत अपने आप ठीक हो जाएगा
0: हम निकल दांत
1: हम घर जाकर अपना घरेलू इलाज करेंगे मगर दांत नहीं निकलवाएंगे
4: अच्छा चलो भाई भाई मेरे दांत तो सुने मेरे फीस सुने
0: अजी मैं कहती हूँ उठना है कि नहीं लो ये तो मगने सोने लगे

0: पॉइंट हूँ ना।
1: क्या?
0: एक कसम से कहती हूँ, जब से डॉक्टर के पास से आए हो सो ही रहे हो। लो चाय पी लो।
1: मगर पीऊँ कैसे, मेरी तो दांत के तरह से जान निकलने लगी है।
0: ओहो, अभी तो चैन से सो रहे थे, डॉक्टर के पास गए भी और दांत क्यों नहीं निकल आया। अब मैं क्या करूँ?
1: ऐसा करो, ये चाय तुम पी लो, मेरे तो दांत।
0: हे भगवान, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अब चाय भी नहीं पी रहे, मैं क्या करूँ?
2: क्यों भाई शांति, अब कैसे है तुम्हारी इनकी दांत का दर्द?
0: क्या बताऊं बहन, इनका तो खाना पीना भी बंद है।
3: अरे ये दर्द ही तो जानलेवा होता है, तुम ऐसा करो,
0: हाँ
3: इनके जिस दांत में दर्द है ना,
0: हाँ
3: उसके नीचे ये पत्ते दबवा दो, फौरन ठीक हो जाएगा।
0: अच्छा, कैसे पत्ते हैं?
3: एक बार मेरे दांत में भी दर्द हुआ था, तब मेरी माँ ये पत्ते लाई थी।
0: हाँ,
3: मेरा दर्द एकदम ठीक हो गया था। तो फिर आऊंगी पता करने,
2: सारा घर का काम पड़ा है, कपड़े धोने हैं, झाड़ू लगानी है।
0: लो जी ये पत्ते मुँह में रख के देख लो,
1: बड़ा चिंता टेस्ट है इनका तो।
0: अरे ठीक हो जाएगा, घबराओ मत।
2: कमाल है, मुझे तो कांता ने बताया कि तुम्हारे इनके दांत में दर्द है।
3: अरे हाँ,
2: आ आ आ, आ के आवाज तो आ रही थी, मैंने समझा शायद भाई साहब रोजाना कर रियाज कर रहे होंगे।
0: नहीं बहन, ये गर्म पानी के कुल्ले कर रहे थे।
2: अरे हाँ, शक तो मुझे भी हुआ था कि आज जहाज कुछ लंबा हो गया।
0: हाँ बहन, इनको बहुत तकलीफ है।
2: अरे हाँ, दांत में कुछ लगाया है?
0: अरे सभी कुछ तो लगाया, जिसने जैसा कहा वैसा ही किया।
2: कमाल है, तुम ऐसा करो, ये लहसुन लो, मैं छील कर लाई हूँ, तुम फौरन जिस जगह दांत में दर्द है उसके नीचे दबा दो।
0: लेकिन
2: अरे लेकिन वेकन को छोड़ दी। कमाल है, मीठू बहन भी आ गई। अरे आना आना,
4: मैंने भी सुना था कि इनके पति के दांत में दर्द है, मैंने कहा पड़ोसन के नाते।
2: बहन ये तो हमारा फर्ज है।
4: मेरी बात सुनो बहन, वो लहसुन मुँह से निकलवा कर ये मैं जो दवा घी में लाई हूँ ना, ये रख दो, फिर देखना।
0: लेकिन
4: लेकिन लेकिन कुछ नहीं बहन, एक बार मेरी माँ के दांत में दर्द हुआ था, तब डॉक्टर ने ये दवा दी थी, बस एक बार लगाई, आज पूरे 5 साल हो गए हैं। मजाल है उनके दांत में फिर दर्द हुआ हो।
2: लेकिन लहसुन तो कोई बुरी चीज नहीं है।
4: अरे तो इस दवाई को भी आजमाने में क्या हर्ज है?
2: अरे कमाल है, देख लेना बहन, कहीं 19-20 न हो गए हो।
4: मुझे तुम लोगों से कोई दुश्मनी है क्या? फिर डॉक्टर की दी हुई दवा है, ऐसी वैसी तो होगी नहीं।
0: लड़ने की क्या जरूरत है, ला मैं ये भी उनके मुंह में अभी रखे देती हूँ।
2: अरे कमाल है, अच्छा मैं तो चलती हूँ।
4: मैं भी चलती हूँ।
0: ये तो हमारी किस्मत है कि इतना अच्छा पड़ोस मिला है।
4: अरे मेहरबानी कैसी बहन, दुख सुख में पड़ोस को ही तो काम आना चाहिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ।
2: अरे आप जानी तू अब। हाँ बहन, जमा चलो।
1: हाय राम रे, ओ हाय राम रे,
5: राम जी।
1: कौन है भैया?
5: हाय दुखी राम,
1: आओ भाई हिदायती राम आओ।
5: दुखी राम की हाल है?
1: अरे
5: यार एक ही मुंह लटका के बैठा है ना।
1: अरे मेरे दांत में दर्द हो रहा भैया।
5: और क्यों है तेन दर्द?
1: दांत में दर्द है।
5: भैया हाय हाय हाय लगा रहे
0: हैं। कैसे बताएं भाई साहब, उनके दांत में बेहद दर्द है, सब इलाज करके देख लिया, कुछ बनता ही नहीं।
5: कमाल जाइए। जरा जी बात तो पीछे इतना नामा करा कर लिया।
0: बुरा सी बात। अरे भाई साहब, सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया, जिसने जैसी दवा बताई वैसे ही किया।
5: राजा नहीं होया कितना फायदा है जाए जी, कुछ नुस्खे होंगे ना, नुस्खे जो सिर्फ किसी किसी ने वाले होंगे ने। तेरी किस्मत चंगी है, ऐसी इतने आ गए हैं।
1: मगर इससे क्या होगा?
5: ओए पूछ के इतना होएगा कि नहीं?
1: अरे
5: तू भी यार अजीब आदमी है। देख मत, दांत में दर्द उदो होता है तो दांत च कीड़ा लगा होवे।
1: कीड़ा?
5: हाँ कीड़ा, कीड़ा भी उदो लगता है जब मिठा खाता होवे। और तू जरूर मिठा खाता होना है।
1: हाँ यार कल मैंने लड्डू खाया था।
0: मगर तुमने लड्डू कब खाया जी?
1: अरे भगवान, दफ्तर में कांता ने अपनी शादी की खुशी में बांटे थे।
5: तम्बाकू दांते थले रख ले तो कीड़ा मर जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा।
1: मगर
5: छाटो और मुंह के अंदर ना जान रही थी। शाबाश,
0: दर्द ठीक हो जाएगा जी।
1: मुझे
5: जी,
1: मुझे तो
5: 5 मिनट लगेंगे।
1: चक्कर आ रहा है।
5: चक्कर आएगा, ओए दांत रे कीड़े में भी चक्कर आएगा और नटली बाहर आएगा।

हवा महल में अभी आप सुन रहे थे राजकुमार वाल्टर की लिखी झलकी नीम हकीम। निर्देशक थे गोपाल सक्सेना। आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: तो बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

फिल्म का गीत आपने सुना के कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, नुसरत बद्र के बोल थे इस्माइल दरबार का संगीत था।

शुभ गंगा रहता है, सुन कहीं था सुखविंदर सिंह और सिद्धा साधना सरगम की आवाजों में देव कोहली के बोल थे।

0: बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत आपने सुना, श्रेया घोषाल, गणेश चंदन शिव और मुश्तबा अजीज नाजा की आवाजों में सिद्धार्थ गरिमा, सरफराज और गणेश चंदन शिव के बोल थे, शैल प्रदेश नितिन शंकर की तर्ज थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: फिल्म अशोक का चित्रा की आवाज। गुलजार का लिखा ये गीत है, अनु मलिक का संगीत।

0: बंटी और बबी फिल्म का गीत आपने सुना अली सचिन और शंकर महादेवन की आवाजों में, गुलजार के बोल था शंकर एहसान लोहे की तर्ज थी। चित्रलोक कार्यक्रम छुटाओ यहीं संपन्न होता है।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी ते तुसी सुन रहे विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। 8:45 होने वाले ने, हुण तों कुछ ही पलां तुसी सुणोगे दिल्ली केंद्र तों समाचार संध्या।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
3: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने।

0: ही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: महिला न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चलेगी।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
4: एलएनजी कैरियर दिशा
5: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
0: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना

0: सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਕੇ ਲੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ।
2: ਇਹ ਹੈ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ, ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੁਰੀਲੀ ਧੜਕਨ। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए।

पत्थर के सनम फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। फिल्म जंगली मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, हसन जयपुरी के बोल।

की परछाई है। सुनने आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज, राजा मेहदीली खान के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

राजा जानी फिल्म का गीत था लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी की बोल थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

धरती कहे पुकार की आप सुन रहे थे। इस फिल्म में मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज ने मजनू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।

0: महेंद्र दत्ता की तर्ज थी सहल ध्यान लिखाई गीत। आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म धर्मपुत्र से, और इस गीत के पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया था धरती कहे पुकार के। इस फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें थी। मुझे सुल्तानपुरी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

बख्शी का लिखा ये गीत आपने सुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। चरस फिल्म का ये नगमा था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार, जिनकी अदाओं में नजाकत, जिनकी गायकी में नफासत है, जिन्होंने अपने हुस्न और हुनर के जरिए फिल्मी पर्दे पर एक नई इबारत लिखी है, वो हैं आज की फनकार।

की दवा बन जाती है उनकी आवाज और उनकी अदायगी। आज के फनकार कार्यक्रम में चर्चा गायिका और अदाकारा सुरैया की।

मीरा बचपन में बड़े नाज नखरे के साथ पली बढ़ी। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थीं। 15 जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मी थी। बचपन में उनका नाम था सुरैया जमाल शेख। बाद में अभिनय और गायन की दुनिया में वे सुरैया के नाम से मशहूर हुई।

सुरैया के फिल्मी करियर के शुरू होने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। वो स्कूल की छुट्टियों के दिन थे जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गईं। तब निर्देशक नाना भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नज़र में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। ये बात सन 1941 की है। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज़ सुनी तो उन्हें फिल्म शारदा में गाने का मौका दिया।

एक वक्त था जब रोमांटिक हीरो देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे और सुरैया थी हीरो ग्रेगरी पैक की दीवानी। देवानंद को ये बात अच्छी तरह से पता थी। लोगों का ये मानना है कि सुरैया के प्रिय हीरो ग्रेगरी पैक की एक्टिंग के स्टाइल को देवानंद ने कॉपी की और देवानंद के अभिनय का दीवाना हुआ सारा जमाना। तमाम अभिनेताओं ने देवानंद के अभिनय के अनोखे अंदाज को अपना अंदाज बनाया। धीरे धीरे देवानंद और सुरैया के बीच मोहब्बत की एक डोर बंध गई, लेकिन अंततः ये जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई। वजह थी सुरैया की दादी, जिन्हें देव साहब पसंद नहीं थे, मगर सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित अपने फ्लैट में अकेले ही

कहा जाता है देवानंद ने सुरैया को टूट कर प्रेम किया था। रोमांसिक विद लाइफ संस्मरण में देवानंद ने लिखा था, सुरैया की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। हाँ, मैंने उन्हें प्यार किया था, इसे मैं अपने जीवन का मासूम प्यार

0: 1948 में देवानंद की फिल्म विद्या में वे देवानंद की नायिका बनी।
1: किनारे किनारे चले जाएंगे, जीवन की नैया

सुरैया की आवाज में जहाँ एक तरफ दर्द है वहीं दूसरी तरफ खुशी की तरंग भी सुनाई पड़ती है। फिल्म अफसर के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा ये गीत उन्होंने किस अदा के साथ गाया है सुनिए।

देवानंद की फिल्म अफसर बन रही थी तो सचिन देव बर्मन ने सुरैया के लिए एक गीत तैयार किया, जबकि एस डी बर्मन साहब खुद बड़ा अच्छा गाना गाते थे। सुरैया ने देवानंद से कहा कि सिचुएशन बदल कर ये गीत बर्मन साहब से ही गवाया जाए, लेकिन बर्मन साहब राजी नहीं हुए। वे बोले, ये गीत खास तौर पर सुरैया के लिए ही बनाया गया है, सो ये गाना सुरैया ही गाएंगी। और फिर ये गीत सुरैया ने गाया और हम सब के लिए वो गाना मन का मोर बन गया।

0: सुरैया विदेशी एक्टर ग्रेगरी पैक की दीवानी थी, ये बात उनके चाहने वालों को बखूबी मालूम है, लेकिन इस बात को वे किस खास अंदाज में कहती थी सुनिए।
1: 1952 के फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के डायरेक्टर मिस्टर फ्रैंक कापरा आए थे। बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा, ग्रेगरी पैक की फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं, आप उनसे ये जरूर कह दीजिएगा। और फिर मिस्टर कापरा ने मेरा फोटो और मेरा पता ले जाकर जब ग्रेगरी पैक को दिया तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा कि कभी मौका हुआ तो हिंदुस्तान आकर आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं तो यही समझी थी कि वो क्या आएंगे और क्या मुलाकात करेंगे।

करीब 2 साल बाद एक दिन फिल्म बिल्वा मंगल की शूटिंग से मैं थकी हुई आई और सो गई। रात को करीब 12 बजे मुझे मम्मी जगाने लगी। उठो उठो, देखो बाहर कौन आया है। ग्रेगरी पिट तुमसे मिलने आए हैं। पहले मैं ख्वाब समझी, मगर जब नींद टूटी तो ये हकीकत थी।

सुरैया गायिका और अभिनेत्रियों की आखिरी पीढ़ी थी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नूर जहां और खुर्शीद सरहद के उस पार चली गईं, पर सुरैया हिंदुस्तान में ही रहीं। लगभग 20 बरस लंबे अपने करियर में उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया। अपने गाने उन्होंने खुद गाए। उन्होंने मोहम्मद रफी, दलत महमूद जैसे दिग्गज गायकों के साथ गाने गाए।

50 के दशक में एक दौर ऐसा आया जब सुरैया की फिल्में चल नहीं रही थीं। इसी दौर में सोहराब मोदी के लिए उन्होंने फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया। ये एक तरह से उनकी आखिरी कामयाब फिल्म थी। कमाल की बात यह है, मधुबाला और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में अभिनय के लिए कोशिश की, पर ये रोल सुरैया को मिला। ये उनके गायन के सफर के लिए खूबसूरत तोहफा था। प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल पाने वाली ये पहली फिल्म थी।

0: दोस्तों, क्या आपको मोती महल फिल्म का ये गाना याद है, मोटर बिगड़ने का?
1: कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, कभी न बिगड़े किसी

1958 फिल्म मालिक में आया सुरैया का एक नायाब गाना, साथ में तलत महमूद की आवाज, संगीतकार गुलाम।

सुरैया ने उस समय फिल्मों को अलविदा कहा जब वे और फिल्में कर सकती थीं। उनकी आखिरी जिंदगी अकेलेपन के साये में गुजरी और फिर 31 जनवरी सन 2004 में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गई उनकी आवाज, उनकी तस्वीरें और जिंदगी का उनका दर्द।

के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी गायिका और अदाकारा सुरैया पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से हम बोल रहे हैं। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
3: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो, क्या तब भी?
4: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
3: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
4: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
3: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ, सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
4: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

मेहरबान है जवानी और कुछ उम्र का भी तकाजा है। हमारी मदहोशी के बारे में जमाने का तो यही अंदाजा है।

तिलिस्मी नजरों ने देखते ही बांध लिया है दिल को, नैनों की जादूगरी का क्या कहना। आंखों में सुरूर, लबों पे मुस्कान, यही है पहचान दिलबर की, इस हसीन शख्सियत का क्या कहना।

0: छाया गीत के बाकी गीत इस अंतराल के बाद।
1: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
2: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
2: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
2: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत।

समझो जरा दिल के जज्बात को, मेरे दिल में रखो भूल से।

बेरुखी का आलम है, इजाजत नहीं है मोहब्बत की, बेसब्र दिल को इंतजार तो करना होगा। गुलों पे बहार आने का, कली के फूल बनने का इंतजार तो करना होगा।

न रहा वो गुलशन, अब वो हवा भी तो नहीं है। समा गई है कायनात इस दिल में, हमारी ये दास्तान।

0: छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया जयंत के साथ। अब इजाजत दीजिए।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्म

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्नर क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: असी आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 MHz ते। पेश ने मुख प्रदेशक खबरां। उत्तर प्रदेश के जेवर विच नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तो व्यापारक उड़ाना मुड़ शुरू होने नाल हरियाणा नूं भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक अग्निकांड विच मारे गए 3 जनिया के परिवारों नूं 10-10 लाख रुपए, पूरी तरह तबाह हुई दुकानों के मालकों नूं 5-5 लाख रुपए, होर दुकानदारों नूं 2-2 लाख रुपए और सड़िया हुई रेहड़ियों के मालकों नूं 50-50 हज़ार रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि अमरीका ईरान जंगबंदी समझौते नाल भारत नूं बहुत फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी की सूबा प्रधान अर्चना गुप्ता ने कहा कि विश्वव्यापी स्थिति के कारण दूजे देशों के मुकाबले भारत विच ईंधन और दवाइया कीमतों विच घट वाधा होया। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे ते यात्री सहूलत दिवस मनाया गया। हवाई अड्डे के अहाते विच रुख लगाउण का भी आयोजन किया गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने लई अज अंबाला अते पलवल विच आयुष विभाग वल्लों एक योगा मैराथन का आयोजन किया गया। 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी लई हरियाणा विधानसभा कंपलैक्स विखे कल एक योग प्रोटोकॉल सिखलाई प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। हरियाणा अते पंजाब विच अज वोटर सूचिया की विशेष तिब्बत सोध प्रक्रिया शुरू हो गई। बुद्ध पदरी अधिकारियों ने घरां विच जा के फार्म भरन लई दित्ते। अज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के राज टीवी यूनिट और सेहत विभाग द्वारा मौली जागरण डिस्पेंसरी विखे एक विशेष टीवी HIV स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। मुख प्रदेशक खबरां खत्म हुई।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
3: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: लोहम सुनो पंजाबी की तरह सजा प्रोग्राम सुरसांझ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रोग्राम दा अगला गीत मिस पूजा दी आवाज़ विच।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: लोहन सुनो गिपी गरेवाल, शिप्रा गोयल अते अद्रिजा गुप्ता का गीत।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ। बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: लोन सुनो नेहा कक्कर का गीत।

0: हर माँ चाहती है उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, और अगर माँ HIV पॉजिटिव हो क्या तब भी?
1: हाँ बिल्कुल, आज के मेडिकल साइंस ने ये मुमकिन बना दिया है कि HIV पॉजिटिव माँ भी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: बस एक छोटे से कदम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान HIV टेस्ट अवश्य करवाएं, और ये टेस्ट सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त है।
1: HIV पॉजिटिव होने के बाद भी अगर माँ प्रोग्राम के तहत टाइम पे ARV दवाइयाँ लेना शुरू करे और डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो, तो माँ एक हेल्दी HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है।
0: ये सारा इलाज एवं सारी दवाइयाँ सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है, सिर्फ वक्त पे कदम उठाना जरूरी है।
1: याद रखिए, आपका समय पर लिया गया सही कदम आपके बच्चे को जीवन दान दे सकता है।
0: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। UT चंडीगढ़ स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ। 11 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एविया पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज़ ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप H में स्पेन और कबो वर्डे के बीच

0: मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਭਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 5:55 'ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।